मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की पांचवी तिथि तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय प्रातः की 5:56 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप

में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 के रुख हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, भक्ति में ही शक्ति है। प्रभु को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

शिव भवानी हो जग कल्याणी, असुर विनाशिनी नव दुर्गे जय हो। शिव शैलपुत्री जय अम्बे कौरी, जय जगजननी माँ जय हो।

हे दुर्गे माँ, आप सर्व कल्याणी सर्व मंगलकारी हैं। हे जगत तारिणी जगत धारिणी माँ, आपको हम बारंबार नमन करते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे लता मंगेशकर, मेहदी हसन, जगजीत सिंह और साथियों की। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं स्वामी श्रद्धानंद के विचार।
1: जैसे दर्पण में देखने पर चेहरे के दाग उसका स्वास्थ्य और सौंदर्य दिखाई देता है, उसमें हम जैसा चाहते हैं परिवर्तन कर लेते हैं, उसी प्रकार से जब हम आत्म साक्षात्कार अथवा आत्मवार्ता करने बैठते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हम में क्या क्या कमियां हैं, दोष हैं। यही कारण है कि विद्वान संत और मनीषी कहा करते हैं कि यदि ये जानना चाहते हो कि तुम कब कहां क्या बनकर रहे हो, तुमने आज क्या खोया है क्या पाया है, तो आत्म साक्षात्कार की आदत डालो। ये सर्वमान्य है कि ये संसार माया मोह के रंग बिरंगे आवरणों से ढका हुआ है, जिनके बीच में फंसकर मनुष्य ये समझने लगता है कि ये सांसारिक उपलब्धियां, ये भौतिक सुख ही सत्य है। वो भूल जाता है कि वास्तव में सत्य भौतिक संसाधन नहीं बल्कि ब्रह्म अर्थात ईश्वर है। वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के सार्वभौम सूत्र से विमुख हो जाता है। ब्रह्म सत्ता विमुख व्यक्ति सभी कार्यों का कर्ता स्वयं को मान बैठता है और वो भी करने लगता है जो उसके लिए यथेष्ट नहीं है और न ही अभीष्ट है। संसार की सार्वभौम सत्ता का नियंता ईश्वर ऐसे व्यक्तियों के लिए नितांत गौण हो जाता है। फलस्वरूप वो स्वयं के किए को ही सत्य, शिव और सुंदर मानने लगता है। मनुष्य का पतन बस यहीं से तो आरंभ होता है। ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि व्यक्ति को बोध कराया जाए कि उसने जो मार्ग चुना है वो उचित नहीं है। वो जिसे उन्नति मान रहा है वही उसकी सबसे बड़ी अवनति है। जिसे वो सभी सुख की खान समझ रहा है वही उसके दुख का महान समुद्र है। समस्या ये है कि अधःपतन की ओर जा रहे उस व्यक्ति को ये बोध कौन कराए, जो पूरी तरह से माया मोह में जकड़े हैं। वैध अवैध तरीके से धन कमाना ही जिनका धर्म बन गया है उन्हें समझ पाना इतना आसान नहीं है, किंतु जिन्हें अपने किए का जरा सा भी बोध है वे इस बीमारी का इलाज स्वयं कर सकते हैं। इलाज है आत्म साक्षात्कार। हमारे धर्म ग्रंथ भी इस ओर संकेत करते हैं कि यदि हम प्रातः कर्म क्षेत्र में कूदने से पहले उस सर्वशक्तिमान प्रभु को स्मरण करके एकाग्र चित्त होकर प्रभु से कहें कि आज पूरे दिन प्रभु मुझसे सत्कर्म ही कराना, तो आधा भ्रम भार पहले ही कम हो जाएगा। इसके बाद यदि समाप्ति के बाद हम आत्म केंद्रित होकर स्वयं से पूछें कि आज तुमने क्या क्या किया जो कि नहीं करना चाहिए था, प्राप्त उत्तरों को पूरी ईमानदारी से यदि हम ग्रहण करें तो ये तय है हमें वो सब पता चल जाएगा जो हमें नहीं करना चाहिए था। यही अवसर होता है संकल्प करने का, व्रत लेने का कि अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। यही वो क्षण होता है जबकि हम क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है इन सब बातों का सही सही निर्णय कर पाते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक और व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति

0: जिसका कोई स्वरूप नहीं होता है, किंतु वो हमारे एक एक क्षण के कर्मों का लेखा जोखा रखता है। वो हंस की तरह नीर क्षीर विवेककारी होता है, अतः वो हमारे सदकर्मों और दुष्कर्मों को अलग अलग रखता है। जब हम अपने अंदर के उस व्यक्ति से बात करने बैठते हैं तो वो सही सही स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। इसे ही आत्मवार्ता अथवा आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि यदि हम आत्म संशय नहीं है, यदि हम आत्म साक्षात्कार करने की आदत डालते हैं तो निश्चय ही पाप आचार से भी बच जाते हैं।
1: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे स्वामी श्रद्धानंद के विचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान कार्यक्रम। खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी डॉक्टर पीसी रावत की वार्ता, जिसका विषय होगा दुधारू पशुओं से सुई लगाकर दूध निकालने के परिणाम। प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज शर्मा डायबिटीज के कारण और उसके उपचार के विषय में जानकारी देंगे। प्रातः 9:25 पर गांधी चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा यंत्रीकरण के संबंध में गांधी जी के विचार। अर्चना वार्षने के कई लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंडित राजन साजन मिश्रा का राग राम कली में ख्याल गायन। 11:00 आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत।

समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ। चर्चा का विषय होगा नाश का कारण नशा। श्रोताओ, ये चर्चा अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर आधारित होगी और 12 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में सुनेगा निभा कुमारी से काव्य पाठ। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा महिला बने नशा मुक्ति की ताकत। डॉक्टर मेघा तलेगांवकर की गाय गीत और भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर। श्रोताओं, 3 बजे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन के तहत समाप्त फरमाइएगा सैयद इख्तियार जाफरी का मकाला जिंदगी की रोशनी छीन लेता है नशा। कलाम शायर के तहत अपना कलाम पेश करेंगे सलीम अहमद ईटवी, साथ ही सुनेगा अब्बास रजा का अफसाना शहजादा ए तकदीर। हमारी सांधिकालीन सभा में फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में 5:30 पर आप सुनेंगे रिया मिश्रा की वार्ता जिसका विषय होगा नशा छोड़िए और सपने जोड़िए। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत। चर्चा का विषय होगा इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और नई पहल के तहत हम जानकारी देंगे नवाचार मंत्र पहल के विषय में। 6 बजे ग्रामीण कार्यक्रम में सुनी जा सके कि हरी खाद की उपयोगिता के विषय में डॉक्टर भूमिराज सिंह की वार्ता। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ चर्चा का विषय होगा पशुओं में टीकाकरण का महत्व, साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। 6:30 पर मसूर मंडल कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रमिकों

के लिए कानूनी सुविधाओं के विषय में पद्मजा शर्मा की वार्ता। फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और समाज। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पंडित राजन साजन मिश्रा का राग तिलक कामोद में ख्याल गायन।

श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस खान।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर पीसी रावत की वार्ता। आप दुधारू पशुओं से सुई लगाकर दूध निकालने के परिणाम के विषय में जानकारी देंगे।
1: प्यारे किसान भाइयों, हमारा देश दूध के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। दूध पशुओं के अयन में स्थित दुग्ध ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव है। दूध मनुष्य के लिए संपूर्ण भोजन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पशुओं के अयन में स्थित दुग्ध ग्रंथियों से दूध का स्राव लगातार होता रहता है तथा दुग्ध कूपों में दूध जमा होता रहता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से दुग्ध कूपों की मांसपेशियां संकुचित होती हैं तथा दूध थनों में उतर आता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पसराना कहते हैं। जब बछड़ा दूध पीता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है तथा पशुओं में पसराने की क्रिया होती है। कुछ विपरीत परिस्थितियां आने पर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण अयन में दूध भरा होने के बावजूद भी पशु पसराता नहीं है तथा पशुपालक दुधारू पशुओं में सुई लगाकर दूध निकालते हैं। जिस दवा की सुई लगाई जाती है वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रक्त में मिल जाता है तथा दुग्ध कूपों की मांसपेशियों को संकुचित करता है, जिसके कारण पशु दूध को उतारने हेतु मजबूर हो जाता है। दुधारू पशुओं में सुई लगाकर दूध लेने की स्थिति दुधारू पशु के बछड़े की मृत्यु होने पर बनती है। ऐसी स्थिति में पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन न निकलने के कारण पशुपालक सुई लगाकर दूध निकालने की प्रक्रिया अपनाते हैं। स्थान तथा दूध धोने वाले व्यक्ति के बदलने पर भी यह स्थिति आ जाती है। पशुओं में सुई लगाकर दूध लेने के कई घातक परिणाम हैं। सुई लगाकर दूध लेने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के साथ निकलता है। ऐसे दूध को पीने के घातक परिणाम सबसे अधिक कम उम्र तथा किशोर उम्र के लड़के तथा लड़कियों पर पड़ते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से किशोर उम्र से पहले ही लड़कों के जल्दी दाढ़ी मूछ निकल आती है। किशोर उम्र से पूर्व ही लड़कियों में युवावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से बच्चों में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। सुई लगाकर निकलने वाले दूध को पीने से महिलाओं का मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है। दुधारू पशुओं से सुई लगाकर दूध लेने के घातक परिणाम दुधारू पशुओं पर भी पड़ते हैं। जिन पशुओं से सुई लगाकर दूध निकाला जाता है वे पशु गर्मी पर नहीं आते हैं। यदि ऐसे पशु गर्मी पर आ भी जाते हैं तो आसानी से गर्भधारण नहीं करते हैं। दुधारू पशुओं को सुई लगाकर दूध निकालने से पशुओं को सुई लगाकर दूध निकालने की आदत पड़ जाती है तथा बिना सुई लगाए ऐसे पशु दूध नहीं देते हैं। लंबे समय तक पशुओं के गर्भधारण न करने से पशुओं द्वारा दिए गए दूध की मात्रा काफी कम रहती है तथा पशु आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं रहता है। इन्हीं सब घातक परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दूध निकालने के इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेडिकल स्टोर पर अनधिकृत रूप से रखे जाने अथवा बेचे जाने पर यह अपराध माना जाता है।

0: दुधारू पशुओं को इंजेक्शन लगाकर दूध निकालने की पद्धति गांवों की अपेक्षा शहरों में ज्यादा प्रचलित है। शहरवासी ताजा दूध शहरों में रखे जाने वाले पशुओं से लेते हैं। शहरों में दुधारू पशुओं के तबेले पाए जाते हैं। दुधारू पशु पालने से ये लोग अच्छे नस्ल के दुधारू पशुओं को खरीद लेते हैं तथा बछड़े को दूध में पिलाकर पूरा दूध निकालते हैं। बछड़े को दूध न मिलने के कारण तथा बछड़े की सही देखरेख न होने के कारण कुछ ही दिनों में बछड़ा मर जाता है तथा पशु दूध देने में परेशान करता है। ऐसी स्थिति में शहरों में पशु रखने वाले ये लोग ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर दूध निकालते हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने से पशु दूध उतारने हेतु मजबूर हो जाता है तथा बिना किसी कठिनाई के पशु दूध निकालने देता है। शहर में पशुओं को पालने वाले व्यक्तियों के लिए पशु का जल्दी गर्भधारण करना आवश्यक भी नहीं होता है तथा पशु बहुत दिन तक दूध देता रहता है। दुधारू पशु के द्वारा कम दूध दिए जाने की स्थिति में शहर के पशुपालक पशुओं को बेच देते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए दूध के खरीदारों को यह मालूम कर लेना चाहिए कि जिस स्थान से वह दूध ले रहे हैं वहां ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग हो तो नहीं रहा है। यदि वहां पर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग हो रहा है तो उस स्थान से दूध नहीं लेना चाहिए। साथ ही शहर के पशुपालकों को यह प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि वे दुधारू पशुओं के बछड़ों का अच्छी तरह से पालन पोषण करें, उन्हें पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं जिससे बछड़ों की मृत्यु न हो। इसके साथ ही यदि किसी कारण दुधारू पशु का बछड़ा मर जाता है तो पशुपालक ऑक्सीटोसिन का प्रयोग न कर पशुओं के साथ नरम व्यवहार करें तथा पशु चिकित्सक से सलाह लें। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में दूध उतारने के लिए किया जाना इस हार्मोन का दुरुपयोग है। दुधारू पशुओं में बछड़े की मृत्यु, स्थान बदलने तथा दूध दुहने वाले व्यक्ति के बदलने से यदि पशु दूध नहीं उतारे तो पशु के साथ नरम व्यवहार किया जाना चाहिए। पशु को पौष्टिक आहार देना चाहिए। पशु के थनों को धीरे धीरे सहलाना चाहिए। यदि पुराने दूध धोने वाले व्यक्ति को लाना संभव हो तो पुराने दूध धोने वाले व्यक्ति को लाकर कुछ दिन नए व्यक्ति के साथ दूध निकलवाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। यदि इन सभी उपायों से पशु दूध न उतारे तो पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए तथा दूध निकालने वाले इंजेक्शन का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आपने सुनी दुधारू पशुओं से सुई लगाकर दूध निकालने के परिणाम के विषय में डॉक्टर पीसी रावत की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनेगा हिंदी में समाचार और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनिन से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्रोकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं डायबिटीज के कारण और उसके उपचार के विषय में डॉक्टर मनोज शर्मा की वार्ता।
1: डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज मधुमेह यानी शुगर के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ये मधुमेह या शुगर है क्या?
2: शरीर में शक्ति के लिए हमें शुगर की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें शरीर में शक्ति प्रदान करती है। शुगर एक निश्चित मात्रा में रहती है, जैसे कि 121 खाना खाने के बाद, अच्छा, या जो भी, और यदि ये शुगर की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, 200 के आसपास पहुंच जाती है, तो ये शरीर में हानिकारक प्रभाव डालती है, तभी बीमारी का रूप ले लेती है। हम इस बीमारी को मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं?
2: मधुमेह जब या डायबिटीज बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती है, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ती है, तो पेशाब बहुत ज्यादा आती है।
1: अच्छा,
2: पेशाब जब जहां जाएंगे तो वहां हो सकता है कि चींटे लग जाएं, प्यास, क्योंकि पेशाब ज्यादा जाएगी तो प्यास ज्यादा लगेगी, पेशाब में शुगर निकलेगा इसलिए आपको भूख भी बहुत ज्यादा लगेगी।
1: अच्छा,
2: ये तो सीधे सीधे से लक्षण हुए। इसके अलावा क्योंकि शरीर में शुगर ज्यादा है तो कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसी के हिसाब से लक्षण बनते चले जाते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके पैर में कोई चीज कट गई तो अब वो ठीक नहीं हो रहा, जुकाम खांसी बार बार हो रहा है, कहीं और इन्फेक्शन, पेशाब में बार बार इन्फेक्शन लग रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेशन के रूप में आती हैं। यदि हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आंखों पर असर पड़ता है, आदमी को कम दिखना शुरू हो जाता है, अंधा भी हो सकता है, दिल पर असर पड़ता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, नसें सूखने लगती हैं, पक्षाघात भी हो सकता है, गुर्दे खराब होने लगते हैं, तो बहुत आंतें भी खराब होने लगती हैं, क्योंकि ये शुगर खून के द्वारा पूरे शरीर में जाता है, तो उसके नुकसान भी शरीर के प्रत्येक अंग में होते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कोई उम्र होती है जिसके बाद शुगर की बीमारी की संभावना बढ़ने लगती है?
2: उम्र दो तरह की ये शुगर की बीमारी होती है, जैसे टाइप 1 और टाइप 2 कहते हैं। तो जो टाइप 2 वैरायटी होती है, जो पहले ये कहा जाता था कि 40 साल की उम्र से बाद होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको बच्चों में भी ये टाइप 2 वैरायटी मिलती है।
1: अच्छा,
2: और ये ज्यादातर मोटे लोगों में बहुत मिलती है, जिनके घर में डायबिटीज है उनमें भी मिलती है।
1: हाँ,
2: सेडेंटरी जो कि काम नहीं करते जो लोग, उनमें भी काफी मात्रा में ये पाई जाती है।
1: अच्छा,
2: तो अब उम्र का जो क्लासिफिकेशन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अभी किसी भी उम्र में पाई जा सकती है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, मधुमेह की चपेट में ना आए या ये रोग ना पकड़े, इसके लिए ऐसे क्या प्रयास होने चाहिए?
2: इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने जीवन दिनचर्या में बदलाव लाया जाए।
1: अच्छा,
2: और इसके लिए हम सुबह या दोपहर या शाम कभी भी व्यायाम कर सकते हैं, आधा एक घंटे रोज व्यायाम करें, अच्छा हो सुबह करें।
1: अच्छा,
2: शरीर का वजन ज्यादा है तो उसे आदर्श स्तर पर वजन कम करके लेके आए, परहेज करें, मीठा बहुत ज्यादा ना खाएं, यदि हमें कहीं जाना है पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलें, सीढ़ियां चढ़ें, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। तो ये 2-3 चीजें हैं, व्यायाम, इसके अलावा परहेज और वजन कम करना, ये 3 काम यदि करेंगे हम, तो इस शुगर की चपेट में शायद हम ना आए। और यदि कोई आ भी गया है, शुरुआती तौर में है, तो ये 3 दवाइयां ही समझें आप जो शुगर को कंट्रोल कर लेंगे।
1: अच्छा,
2: तो ये अत्यावश्यक है कि तीनों चीजें करें, उसके बाद फिर नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर दवाइयों की बात आती है, जिसमें कि ओरल दवाइयां भी हैं, इंजेक्शन भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किन्हीं को मधुमेह हो गई है तो वो गोलियां इसके लिए खाएं या इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएं, इस पशुपेश में रहते हैं और ये तय नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं, तो क्या उपयुक्त रहता है?
2: जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 का मतलब है कि शरीर में जो शुगर के इस्तेमाल के लिए इंसुलिन की मात्रा की आवश्यकता है वो शरीर में बन ही नहीं रही है या बहुत कम बन रही है, तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरे टाइप की जो डायबिटीज है, जिसमें इंसुलिन बन रही है, शुरुआत में थोड़ी ज्यादा भी बन रही है, लेकिन इंसुलिन जो बन रही है काम नहीं कर रही है आपके शरीर में, इसलिए वो टाइप 2 डायबिटीज में ओरल दवाइयों से, मुंह से खाने वाली दवाइयों से काम चल सकता है शुरुआत के दौर में, और आप बहुत लंबे टाइम तक उसे कंट्रोल रख सकते हैं दवाइयों से। तो इसलिए टाइप 1 में तो बिना दवाइयों का कोई चारा है ही नहीं।

0: इंसुलिन का कोई चारा है ही नहीं है, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने ही पड़ेंगे। टाइप टू में कुछ टाइम तक, कुछ समय तक आप दवाइयों से काम चला सकते हैं। अब ये कहा जाता है कि पैंक्रिया जो इंसुलिन बनाता है वो यदि हम उसको लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखें टाइप टू डायबिटीज में भी, वो हम ये कर सकते हैं कि कुछ दवाइयां खाएं और कुछ इंसुलिन बाहर से ले लें, तो हमें सबसे अच्छा इलाज मिलेगा।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायबिटीज के कारण और उपचार के विषय में डॉक्टर मनोज शर्मा की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में ये देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में देशगान। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही क्षणों में।

0: कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव

0: होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरनगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्रवाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। आरोपितों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
2: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं तो अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर उन्होंने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। बैठक के दौरान अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री कल अयोध्या भी पहुंचे और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
1: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई घर का उद्घाटन किया। इस रसोई घर का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। यहां प्रतिदिन 1,00,000 स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार कराकर विद्यालयों में वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा को सशक्त समाज की पहचान बताते हुए कहा,
1: शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिक्षा। शिक्षा जैसे होगी, समाज का वर्तमान और उसका भविष्य वैसे ही होगा। मैं आह्वान करूंगा बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, वे इस बात को ध्यान में रखें कि कोई बच्चा छूटने न पाए, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
2: भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौमे आशूरा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के संपन्न होने के बाद ताजियों को कर्बला में दफन कर दिया जाएगा। गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट से 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले शाही जुलूस को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। इससे पहले कल मुहर्रम की 9वीं तारीख पर भी प्रदेश भर में जुलूस निकाले गए। गोरखपुर सहित राज्य के कुछ पूर्वी जनपदों में आज तड़के हुई बारिश से सुबह का मौसम सुहावना हो गया है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में कल भी हल्की बारिश हुई थी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा

सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा आज, ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। और अब शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। श्रोताओं, वन महोत्सव की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। जिले में इस बार पौधरोपण महाअभियान के तहत कुल 50 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग के साथ साथ 26 अन्य विभाग इस अभियान में भाग लेंगे और 2 दर्जन से अधिक नर्सरियों में फलदार और उपयोगी प्रजातियों के पौधों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जिले में फलदार पौधों के रोपण का प्रतिशत इस बार काफी अधिक रखा जाएगा। फलदार पौधे रोपने से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों को सीधा आर्थिक और पोषण संबंधी फायदा मिलता है। ये पौधे जल्दी बड़े होते हैं, जिससे किसान, महिलाएं और आम लोग अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। इसके लिए नर्सरियों को तैयार किया जा रहा है। पौधों की गुणवत्ता और जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए विशेष देखभाल के निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह 1 जुलाई से शुरुआत होगी वन महोत्सव की।

और अब कुछ सूचनाएं परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। श्रोताओं, ग्रीष्म अवकाश खत्म होते ही गुरुवार से जिले के परिषदीय बेसिक विद्यालयों में फिर से रौनक लौट आई। 25 जून को खुले विद्यालयों में पहले दिन विद्यार्थियों के पहुंचते ही शिक्षकों ने उनका तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और लंबे अवकाश के बाद अपने साथियों और शिक्षकों से मिलकर बच्चों के चेहरे तो बस खिल उठे। ग्रीष्म अवकाश खत्म होते ही 1 जुलाई से परिषदीय विद्यालयों में पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया जाएगा, जो कि 15 दिन तक चलेगा। इसके साथ साथ ही विद्यालयों में शेष पाठ्य पुस्तकों का वितरण, शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा भी दिया जाएगा।

श्रोता, हम आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने मुहर्रम अवकाश के कारण आज प्रस्तावित बीएससी कृषि की परीक्षा स्थगित कर दी है। बीएससी कृषि छठे सेमेस्टर और बीएससी कृषि दूसरे सेमेस्टर की आज की परीक्षा अब कल यानी कि शनिवार को आयोजित की जाएगी।

सार्वजनिक पुस्तकालय और राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की अनुदान योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद के सार्वजनिक पुस्तकालयों में आवेदन मांगे गए हैं। इसमें नगरीय, ग्रामीण, अल्पसंख्यक बहुल, अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल क्षेत्रों में संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकीय सहायता, फर्नीचर और संग्रहण सामग्री के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक संगठनों और पुस्तकालय प्रबंधन से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

आगरा वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। यमुना तट पर बना कैलाश मंदिर बल्केश्वर के समान सवर रहा है। यहाँ रेड सैंड स्टोन से घाट, पाथवे, यमुना दर्शन डेक, पवेलियन बनाए गए हैं। रास्ते पर कोबल स्टोन भी बिछाए जा रहे हैं और यमुना तट पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को म्यूरल आर्ट से संजोया गया है। भगवान शिव के डमरू की विशाल प्रतिकृति यमुना तट पर लगाई गई है। सुबह और शाम यहां रौनक देखने को मिलती है। श्रोताओ, आगरा के चारों कोनों पर भगवान शिव के मंदिर, कैलाश मंदिर, बल्केश्वर, राजेश्वर और पृथ्वीनाथ मंदिर हैं। शहर के मध्य में मनकामेश्वर मंदिर और रावली महादेव भी हैं। इसके साथ साथ ही यहां प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर भी हैं। पर्यटन विभाग ने पहले चरण में कैलाश मंदिर को जाने वाले मार्ग पर गेट और यमुना तट पर घाट का निर्माण कराया। दूसरे चरण में यहां वृद्ध स्तर पर सुंदरीकरण का काम कराया गया। अब यहां रेड सैंड स्टोन से घाट और सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को पाथवे भी बनाया गया है। यमुना दर्शन डेक और पवेलियन बनाए गए हैं। यमुना की तरफ दीवार पर भगवान शिव के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को म्यूरल आर्ट्स में उकेरा गया है। इनमें कालिया नागमर्दन, बांसुरी वादन और अर्जुन को दिए गए विराट स्वरूप समेत अन्य हैं। भगवान शिव और पार्वती तांडव नृत्य करते हुए भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा करते भगवान परशुराम और महर्षि जमदग्नि के म्यूरल आर्ट्स बनाए गए हैं। यमुना किनारा की तरफ रेड सैंड स्टोन की जाली का काम किया गया है और यहां सुंदरीकरण का काम बढ़ाया जा रहा है। श्रोताओ, कैलाश महादेव मंदिर अपने आप में अनूठा है। यहाँ एक ही जलहरी में दो शिवलिंग विराजमान हैं। इसकी स्थापना भगवान परशुराम और महर्षि जमदग्नि ने की थी। यही बना मंदिर द्वापर काल में बना बताया जाता है, जिसका समय समय पर जीर्णोद्वार होता रहता है और सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मंदिर पर मेला लगता है और स्थानीय अवकाश भी रहता है।

श्रोताओ, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। और अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। हाईस्कूल परीक्षा 2026 में इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए हर परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यूपी बोर्ड ने 3 दिन बढ़ा दी है। अब 30 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। अभी तक अंतिम तिथि 27 जून निर्धारित थी, लेकिन आज मुहर्रम के अवकाश और माह के चतुर्थ शनिवार के अवकाश के कारण अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब यह तिथि 30 की रात्रि 12 बजे तक कर दी गई है। प्रदेश के स्कूलों में अब छात्रों और शिक्षकों को रेबीज से बचाव का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवारा कुत्तों, बंदरों और अन्य पशुओं के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से ये अभियान चलाएगा। इस प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ छात्रों को प्राथमिक उपचार का व्यवहारिक अभ्यास कराएंगे ताकि आपात स्थिति में वे सही कदम उठा सकें। संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल में बताया जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता, बंदर, सियार या अन्य पशु काट ले तो घाव को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और साफ पानी से धोना चाहिए। इसके बाद एंटीबायोटिक

लोशन लगाने और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर एंटी रेबीज टीका लगवाने की जानकारी भी दी जाएगी और प्रशिक्षण में डमी पीड़ित बनाकर पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन भी किया जाएगा।

रोडवेज में अनुबंध पर 180 चालकों की भर्ती के लिए रोजगार मेला 29 जून को लगेगा। सुबह 10 बजे शुरू होने वाले रोजगार मेले में संविदा चालक बनने के इच्छुक वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। रोजगार मेला सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय आगरा फोर्ट डिपो ISPT पर लगेगा। प्रतिमाह 22 दिन की ड्यूटी और 5000 किलोमीटर से अधिक बस चलाने पर 3000 रुपये का प्रोत्साहन अतिरिक्त दिया जाएगा।

परीक्षार्थियों के लिए कुछ और सूचनाएं हैं। मेडिकल के स्नातक कोर्सों में प्रवेश के लिए 21 जून को फिर से आयोजित हुए नीट यूजी का रिजल्ट जुलाई के पहले हफ्ते तक आ जाएगा। इस बार फिजिक्स के 2 प्रश्न सवालों के घेरे में है। इनमें से एक प्रश्न ड्रॉप होगा क्योंकि इस प्रश्न के चारों में से कोई भी उत्तर मेल नहीं खाता, जबकि दूसरे प्रश्न के 4 विकल्पों में से 2 सही हैं। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी ने नीट यूजी की गुरुवार को जारी प्रोविजनल आंसर की में फिजिक्स के इस प्रश्न को ड्रॉप कर दिया है। इसके अलावा जिस अन्य प्रश्न के 4 उत्तरों में से 2 विकल्प सही हैं उनमें दोनों विकल्पों वाले सभी छात्रों को पूरे अंक मिलेंगे, तो छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एनटीए की ओर से प्रोविजनल आंसर की में केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय से कोई प्रश्न ड्रॉप नहीं किया गया है क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं थी। इसके साथ साथ ही एनटीए ने छात्रों से कहा कि यदि उन्हें किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बता दें कि 21 जून को ये परीक्षा देश भर के 551 शहरों के 5,440 केंद्रों और विदेश के 14 शहरों में बनाए गए केंद्रों पर एक साथ आयोजित की गई थी। इसमें 20 लाख से अधिक छात्र बैठे थे। हिंदी अंग्रेजी सहित कुल 13 भारतीय भाषाओं में नीट यूजी आयोजित कराया गया था। तो इस तरह जुलाई के पहले हफ्ते में नीट यूजी का रिजल्ट आने की संभावना है।

0: श्रोताओं, हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियम में संशोधन करते हुए पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की है। इसके तहत 36 पृष्ठों वाले सामान्य नए पासपोर्ट के लिए आवेदन शुल्क 1500 रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये कर दिया गया है। नए नियम 1 जुलाई 2026 से लागू हो जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने 20 जून की इस अधिसूचना को गुरुवार को प्रकाशित किया। इसके अनुसार 36 पृष्ठ वाले सामान्य नए पासपोर्ट और उसे पुनः जारी कराने के लिए अब सामान्य शुल्क 2500 रूपये निर्धारित होगा, जबकि तत्काल श्रेणी में इसी प्रकार के पासपोर्ट के लिए 5000 रूपये देने होंगे।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि आपने ये संदेश सुना, हम आपको बता दें, आज विश्व नशा मुक्ति दिवस है। नशे के लिए 30% युवा शराब, सिगरेट के साथ ही दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। कई तरह के नशा करने वाले लोगों की लत छुड़ाना मुश्किल होता है। आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस पर डॉक्टर लोगों को जागरूक करेंगे। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों में 12 से 15 वर्ष की आयु में शराब, सिगरेट पीने का चलन

तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये शराब और सिगरेट की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, ज्यादा नशा करने के लिए दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। नशा करने वाले 70% शराब सिगरेट के साथ साथ ही दर्द निवारक इंजेक्शन, नींद की दवाएं सहित अन्य नारकोटिक्स दवाएं भी लेते हैं, जिसमें 30% युवा हैं, तो ये चिंताजनक बात है। युवक और युवतियां भी ड्रग्स लेने से हिचकते नहीं, ये उग्र व्यवहार करने लगते हैं, पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं, स्कूल छूट जाता है, घर से पैसे चोरी करके नशा करने लगते हैं। ऐसे में बच्चों की कुछ गतिविधियों पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर बच्चे का व्यवहार बदलने लगे, बात कम करे, कमरे में ही ज्यादातर समय रहे, पढ़ाई में कमजोर होने लगे, इसके साथ साथ नशा करने के लिए पॉकेट मनी ज्यादा मांगने लगे, इसके साथ साथ सुबह देर तक सोता रहे, कमजोरी और थकान महसूस करी, इन गतिविधियों पर आपको विशेष नजर रखनी होगी। श्रोताओं, हम आपको बता दें, SN मेडिकल कॉलेज में एम्स दिल्ली के सहयोग से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र और ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में नशे की लत छुड़वाने के लिए इलाज भी किया जाता है। नशे की लत लगने पर 3 चरणों में इलाज किया जाता है। पहले नशा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसके बाद दूसरे चरण में दवाएं देकर शरीर को ठीक करने की कोशिश की जाती है। इससे 4 दिन में शरीर से नशा खत्म हो जाता है और नशा छोड़ने पर शरीर में कंपन, व्यवहार में बदलाव सहित अन्य तरह की समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। और उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी की दवाई दी जाती है और ये दवाएं आप घर पर भी ले सकते हैं। इलाज के तहत सबसे पहले शरीर के नशे के विषैले तत्व बाहर निकाले जाते हैं, इसके बाद काउंसलिंग, योग, ध्यान और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से मरीजों को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। ओम प्रकाश पाठक पुत्र भगवती प्रसाद निवासी बलभद्रपुर थाना गोंडा जनपद अलीगढ़ से दिनांक 21 मई 2026 से लापता है। ओम प्रकाश की उम्र 45 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, चेहरा गोल और रंग कोरा है। गुमशुदगी के समय ओम प्रकाश ने सफेद कुर्ता, लाल पजामा और गमछा पहना हुआ था। इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना गोंडा जनपद अलीगढ़ के पते पर सूचित करें। अलीगढ़ से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार प्रज्ञा उर्फ वैष्णवी पुत्री विनोद कुमार निवासी गली नंबर 5 मिथिलापुरी थाना महुआ खेड़ा जनपद अलीगढ़ से दिनांक 9 मई 2026 से लापता है। प्रज्ञा की उम्र 18 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच और चेहरा गोल है। गुमशुदगी के समय प्रज्ञा ने गुलाबी रंग का सूट और सलवार पहनी हुई थी। प्रज्ञा के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना महुआ खेड़ा अलीगढ़ के पते पर सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार कैलाशी पुत्री स्वर्गीय सियाराम निवासी हारनपुर कला थाना दादो जनपद अलीगढ़ से दिनांक 9 मई 2026 से लापता है। कैलाशी की उम्र 18 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच और रंग सांवला है। गुमशुदगी के समय कैलाशी ने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। कैलाशी के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना दादो अलीगढ़ के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई। और अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। श्रोता, मुहर्रम पर आज यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। सुबह 9 बजे से शाम तक ये व्यवस्था रहेगी। करबला पर अतिरिक्त पुलिस बल रहेगा। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भी पुलिस की निगरानी रहेगी और ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। श्रोताओं, इसके तहत भगवान टॉकिस से सुल्तानगंज पुलिया तक सर्विस रोड पर करबला की ओर वाहन नहीं चलेंगे।

वाहन फ्लाईओवर से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। पाए चौकी से फूलों का ताजिया निकलता है। धाकरान, सदर भट्टी, चारपहिया, ई रिक्शा और ऑटो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इसी तरह पालीवाल पार्क से सुल्तानगंज पुलिया की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे, ये जीवनी मंडी से होकर गुजारे जाएंगे। वाटरवर्क से विजयनगर भगवान टॉकीज जाने वाले वाहन फ्लाईओवर से गुजारे जाएंगे। इसके साथ साथ सुल्तानगंज पुलिया ओवरब्रिज के नीचे सभी प्रकार के वाहनों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। एतमादौला से अंबेडकर पुल होते हुए वाहन नहीं जा सकेंगे, सभी वाहन वाटरवर्क्स होते हुए निकाले जाएंगे। स्ट्रेची ब्रिज से दुपहिया और हल्के चार पहिया वाहन एतमादौला की तरफ जा सकेंगे। लोहा मंडी से बोला जाने वाले वाहन मदिया कटरा से करकुंज होकर गुजारे जाएंगे। इसके साथ साथ बोदला से लोहा मंडी कारगिल पेट्रोल पंप से करकुंज होकर वाहन जा सकेंगे। रुई की मंडी, भोगीपुरा, सीओडी चौराहे से ऑटो और ई रिक्शा प्रतिबंधित रहेगा और सेंट जॉन्स चौराहे से ऑटो और ई रिक्शा लोहा मंडी कोठी मीना बाजार की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो अगर आज आप इन इलाकों पर निकलते हैं तो इस ट्रैफिक यातायात व्यवस्था पर ध्यान रखें और उसके हिसाब से ही घर से निकलें ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो।

श्रुता, एकलव्य स्टेडियम में क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग, लॉन टेनिस और वॉलीबॉल की कोच के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इन सभी खेलों के कोच जिला खेलकूद प्रोत्साहन समिति की ओर से रखे जाएंगे। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक दर्जन से अधिक खेलों में प्रशिक्षण लेने को 1000 से अधिक प्रशिक्षु हर रोज आते हैं। फिलहाल स्टेडियम में 10 खेलों में कोच उपलब्ध हैं, अन्य 5 खेलों में कोच नहीं हैं, जिससे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की समस्या रहती है। अब इस समस्या को खत्म करने के लिए जल्द आवेदन मांगे जाएंगे। योग्य कोच का चयन कर खिलाड़ियों की समस्या का समाधान किया जाएगा।

और आज की इन्हीं सूचनाओं के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिमी एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में

8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के

0: स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
3: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
4: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में

0: खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
1: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रुपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत। लोकसत्ते ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection.

कलाकार में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, कृणीश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टीनू का नाम मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की सरबराही वाली SIT ने मंगल के रोज सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। ये केस उस वक्त रोशनी में आया जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मौसूल होने वाले चढ़ावे और चंदे की चोरी के इल्जामात सामने आए। ट्रस्ट ने खसूसी तहकीकात की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIT की तश्कील का हुक्म दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: एसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कल 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में मजीद 4 तमगे जीते और उसके कुल तमगों की तादाद 25 हो गई। मर्दों के 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में राजचंद्रा ने कांसे का तमगा जीता जबकि कुमार योगेश चौथी पोजीशन पर रहे। योगेश, प्रतीक और अभिनव चौधरी पर मुश्तमिल भारतीय टीम ने टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। आखिरी रोज भारत ने 4 तमगे जीते और तमगों की तादाद 25 हो गई जिनमें सोने के 7, चांदी के 8 और कांसे के 10 तमगे शामिल हैं, जिसके बाद भारत लगातार दूसरी मर्तबा तमगों के मामलों में सरे फहरिस्त रहा। क्रिकेट में आज बेलफास्ट में पहले T20 बैन अलावामी मुकाबले में भारत मेजबान आयरलैंड का सामना करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इतवार के रोज भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी T20 मैच खेलेगी। इसके बाद सुरेश अय्यर की कप्तानी में मर्दों की भारतीय टीम 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी। इसका आगाज आइंदा माह की 1 तारीख से होगा। इसके बाद 3 एक रोजा बैन अलावामी क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, वेनेजुएला में तबाहकुन जलजले सैकड़ों अफराद हलाक, 1000 से जायद जख्मी, 10,000 से 1,00,000 के दरमियान अमवात का खदशा, दुनिया के कई मुल्कों ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ। इसी खबर से मुतालिक रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वेनेजुएला में जलजले से भारी तबाही पर दुख, वजीर आजम ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, LPG की सप्लाई पर से तमाम पाबंदियां हुकूमत ने उठाई, अब लोगों को मामूल के मुताबिक गैस सिलेंडर दस्तियाब होगा। भारत अमरीका मेगा डील जल्द, दुनिया की नजरें 24 जुलाई पर टिकी हुई हैं। यह खबर रोजनामा प्रताप के सफ़े अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ मौजूद है। इसी सफ़े की एक और खबर है, दिल्ली की 270 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा, रेखा गुप्ता का बयान। रोजनामा प्रताप ने रेखा गुप्ता के इस बयान को भी नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि दिल्ली के 75 CM श्री स्कूलों में नई सहूलियात तैयार की जाएंगी। कुछ दीगर अहम खबरें इस तरह से हैं, हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 20 जुलाई 2026 से कर दिया गया है, आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 है। 1000 उम्रा जायरीन शाह सलमान के शाही मेहमान बनेंगे, मगरबी यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में नए रिकॉर्ड कायम।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल LPG की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है, मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बैन अलावामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इकतसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उमदा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना कुमार सानू और संजीवनी के जुगत स्वरों में। गीतकार थे राहत इंदौरी, संगीतकार थे अनु मलिक, फिल्म का नाम था करीब।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

साथियों, इस गीत में स्वर थे अलका याग्निक और कुमार सानू के। समीर के बोलों को संगीत से सजाया था अनु मलिक ने और फिल्म का नाम था सोल्जर।

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं पार्टनर फिल्म का गीत। स्वर है सोनू निगम, कुणाल और श्रेया घोषाल की। गीतकार है शबीर अहमद, संगीतकार है साजिद वाजिद।

और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर है सोनू निगम का, गीतकार है जयदीप सानी, संगीतकार है जयदीप सलीम सुलेमान, फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी।

सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

0: 해.
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में जगह जगह योग शिविर लगाए गए। विश्व प्रख्यात ताजमहल के पार्श्व में योगा कर निरोग रहने का दुनिया को संदेश दिया गया। वहीं आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता

0: चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर योगा अभ्यास करते हुए सभी को करो योग रहो निरोग का देश और दुनिया को संदेश दिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस पर दिए गए संबोधन का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। योग शिविर में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, सरकारी अर्ध सरकारी आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में मौजूद शहरवासियों को योगाचार द्वारा योग के विभिन्न आसन कराए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और पूरी दुनिया हमारी विद्या और विद्या का अनुगमन कर रही है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करती है।
1: करें योग, रहें निरोग, और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और मेंटल हेल्थ इस समय विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य में योग का बहुत बड़ा योगदान है।
0: उन्होंने कहा कि योग तनाव को दूर करता है और एकाग्रता पैदा करने के साथ साथ अनेक बीमारियों से भी बचाता है। बीते दिनों आगरा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ब्रिक्स इंडिया 2026 के तहत पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरे ब्रिक्स एमएसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक सम्पन्न हुई। पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम की बैठक में केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री भूपेन्द्र चौधरी सहित ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबिया, कजाकिस्तान, मलेशिया सहित 21 देशों के ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों की नीति निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लेकर वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संबोधित करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और कमजोर वर्गों के उत्थान में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 8.6 करोड़ एमएसएमई इकाइयां हैं जो 38 से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। वहीं प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन केवल संवाद का अवसर नहीं है बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग, तकनीकी आदि।
2: स्वच्छता अभियान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी विभिन्न स्थानों पर जाकर के इस अभियान के माध्यम से एक संदेश समाज में देने का कि पूरा समाज जब किसी अभियान का हिस्सा बन जाता है तो वो अभियान एक आंदोलन बन जाता है।
0: आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के पी इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित किसान, जवान, महिला, स्वाभिमान रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हल्दी घाटी को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता और उनका शौर्य किसी दरकार और इतिहासकार का मोहताज नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
3: हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत नहीं है।
4: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विकासखंड अफजलगढ़ स्थित ग्राम आलमपुर गावड़ी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित, शोषित एवं जरूरतमंद वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों तथा 50 पूर्व सैनिकों एवं लीज धारकों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भूमिधरी अधिकार मिलने पर लाभार्थियों को न केवल भूमि पर वैधानिक स्वामित्व प्राप्त होगा बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुगमता से मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, डेमो चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चयनित 11 प्रेरणादायी लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों ने बताया,
6: जो हमारी जमीन में ट्रेनिंग दो में थी, अब एक में हो गई है, हमें पूर्ण भूमिधारी का अधिकार मिल गया है, इसमें हम लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं।

0: हमारा स्वामित्व पूरा हो गया। सरकार ने हमें वो प्रमाण पत्र दिए और हमें खतौनी दी है, हम उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
1: मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे तथा अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा सरकारी योजनाओं का सदुपयोग कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। विभाजन विभीषिका के शिकार विस्थापितों को भूमि आवंटन के मालिकाना अधिकार के अभिलेख पत्र प्रदान करने से पूर्व उन्होंने विभिन्न विभागों के तत्वाधान में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगाई गई बिजनौर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मसूद, जिला अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौहान तथा जिलाधिकारी जसजीत कौर की उपस्थिति में सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इंदिरा बाल भवन में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि तारिक मसूद ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा जनपद की विकास पर योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के जरिए अब बिजनौर जिले के पारंपरिक स्वादों को न केवल नई पहचान मिलने जा रही है बल्कि इससे जुड़े छोटे और मझोले कारोबारियों के दिन भी बहुरने वाले हैं। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब एक जिला एक व्यंजन योजना के अंतर्गत बिजनौर के 4 प्रमुख स्थानीय उत्पादों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब इन व्यंजनों को तैयार करने वाले स्थानीय निर्माताओं को सरकार की तरफ से भारी अनुदान और आसान किस्तों पर ऋण की सुविधा मिलेगी। जिले में प्रमुख व्यंजनों को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए प्रशासन ने 4 खाद्य पदार्थों का चयन किया है। धामपुर की सिंगाड़े की कचरी, नजीबाबाद की गजक, सोन पापड़ी और बतीसा पारंपरिक रूप से तैयार होने वाला एक मीठा व्यंजन है जो इस सूची का मुख्य हिस्सा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आवेदकों को ऋण सुविधा के साथ भारी अनुदान दिया जा रहा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया,
2: परंपरागत मिष्ठान है या कुछ ऐसे व्यंजन है जो अभी तक लोकल लेवल तक ही सीमित थे, उसी जनपद तक सीमित, अब इस स्कीम से उनकी पहचान प्रदेश भर में और देश भर में या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का सरकार का मुहिम है।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, गांधी चर्चा के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं यंत्रीकरण के संबंध में गांधी जी के विचार।

और अब यंत्रीकरण के संबंध में बापू के विचार। मैं मशीनों का नहीं वरन उनकी अंधाधुंध चाह का विरोधी हूं। आज श्रमहारी मशीनों की प्रबल चाह है। मनुष्य यहां तक श्रम को बचाता जा रहा है कि हजारों लोग बेकार हो जाते हैं तथा भूख से तड़पकर मरने के लिए सड़कों पर जा पड़ते हैं। मैं मनुष्य के किसी अंग के लिए नहीं वरन समस्त मानव जाति के लिए समय की बचत चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि संपत्ति का संग्रह कुछ लोगों के हाथों में नहीं वरन सबके हाथों में हो। आज यंत्र चंद लोगों को करोड़ों लोगों की पीठ पर सवारी करने में मदद कर रहे हैं। इनके पीछे मूल प्रेरणा श्रम को बचाने की नहीं वरन लोभ की है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक सत्य और खोज को लोभ का साधन बनाना बंद कर दें। तब मजदूरों पर काम का दबाव नहीं रहेगा तथा यंत्र बाधक के स्थान पर सहाय बन जाएंगे। मैं यंत्र मात्र का उन्मूलन नहीं नियंत्रण चाहता हूं। मैं एक बात साफ कर दूं कि मेरे सामने मनुष्य ही प्रमुख लक्ष्य है। यंत्र मनुष्य के अंगों को बेकार न बना दे। मैं इसमें कुछ अपवाद करना चाहूंगा, जैसे सिलाई मशीन। मैं चाहता हूं कि श्रम की दशाओं में परिवर्तन होना चाहिए। संपत्ति के लिए अंधी दौड़ समाप्त होनी चाहिए तथा श्रमिक को यह आश्वासन मिलना चाहिए कि उसे केवल एक न्यूनतम वेतन ही प्राप्त नहीं होगा वरन एक ऐसा प्रतिदिन का धंधा भी उसे मिलेगा जो कि उसके लिए मुसीबत नहीं बनेगा। मैं यंत्रों के विरुद्ध नहीं हूं, परंतु जब यंत्र हमारे ऊपर शासन करना चाहते हैं तब मैं उनका पूरी तरह विरोध करता हूं। मैं अपने विचार के अनुसार भारत का औद्योगिकरण चाहता हूं। ग्राम समाज का संगठन फिर से होना चाहिए। भारत के गांव भारतीय नगरों की समस्त आवश्यकताओं के लिए उत्पादन करके उन्हें पूरा करते थे। जब हमारे नगर विदेशी बाजार बन गए और वे विदेशी वस्तुओं के व्यापार द्वारा भारतीय गांवों का जीवन नष्ट करने लगे तब भारत निर्धन हुआ। हम अनुपम जीवित यंत्रों अर्थात हमारे अपने शरीरों को बेकार छोड़कर नष्ट कर रहे हैं और उनके स्थान पर निर्जीव यंत्रों की स्थापना कर रहे हैं। विश्राम एक सीमा तक ही अच्छा और आवश्यक हो सकता है। परमेश्वर ने मनुष्य को पसीना बहाकर रोटी कमाने के लिए पैदा किया है। मुझे भय है कि यदि हम जादू के जोर से अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे। जब उत्पादन और उपभोग स्थानीय होते हैं तो उत्पादन को किसी भी प्रकार अधिकाधिक बढ़ाने का आकर्षण नहीं रहता। हमारी वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था से जो कठिनाइयां और समस्याएं पैदा हुई हैं उसमें वे सब भी समाप्त हो जाती हैं। उस स्थिति में चंद लोगों की जेब में अधिकांश संपत्ति का अस्वाभाविक संग्रह तथा विपुलता के बावजूद भी शेष समाज के लिए दरिद्रता का अभिशाप नहीं रह सकेगा। ये थे यंत्रीकरण के संबंध में बापू के विचार। और अब सुनते हैं MS सुब्बलक्ष्मी के स्वर में बापू का प्रिय भजन।

0: श्रोताओं, गांधी चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे यंत्रीकरण के संबंध में गांधी जी के विचार।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: साथियों, हम जब भी श्री कृष्ण का नाम सुनते हैं तो हमारे हृदय में एक चित्र उभर आता है। सिर पर मोर के पंख का मुकुट, हाथ में बंसी, पीले वस्त्र और मोहक मुस्कान, ऐसा रूप है हमारे कृष्ण कन्हैया का।

माँ यशोदा के लाडले श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से कौन परिचित नहीं है। समस्त संसार को अपनी मुरली की धुन का दीवाना बनाने वाले श्री कृष्ण हम सबके दिलों में वास करते हैं।

मीडियम वेव 196.1 मीटर 28,530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं अर्चना वार्ष्णेय के गाए कुछ लोक गीत। आपके साथ संगत कलाकार हैं। ढोलक पर प्रस्तुति है परमानंद शर्मा की, हारमोनियम पर साथ देंगे कादिर खां और साइड रिदम है राजकुमार पांडे का।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अर्चना वार्ष्णेय की गाय कुछ लोकगीत।

श्रोताओ, लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अर्चना वार्ष्णेय के गाए कुछ लोक गीत। आपके साथ संगत कलाकार थे, ढोलक पर प्रस्तुति थी परमानंद शर्मा की, हारमोनियम पर साथ दिया कादिर खान ने और साइड रिदम था राजकुमार पांडे का। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

आइए अब आपको सुनवाते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गीत। स्वर है चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर की। गीतकार है अमिता भट्टाचार्य, संगीतकार है विशाल शेखर।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: कार्यक्रम का अगला गीत है कलंक फिल्म से, स्वर है अरिजीत सिंह का।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे गाए है अखिल सचदेव और मंशीर गुजराल ने। फिल्म का नाम है बद्रीनाथ की दुल्हनिया।

और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म है तमाशा, स्वर है अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की, गीतकार है इरशाद कामिल, संगीतकार है ए आर रहमान।

अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की गाय इस गीत के साथ। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 के किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं पंडित राजन साजन मिश्रा का राग राम कली में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन साजन मिश्र का ख्याल गायन राग रामकली में। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध था। बोल थे ले साहब को नाम। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध था। बोल थे सगरी रैन के जागे। हारमोनियम पर थे महमूद धौलपुरी और तबले पर संगत कर रहे थे ईश्वरलाल मिश्रा। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम में आज हम सुनेंगे अभिनेत्री करिश्मा कपूर की फिल्मों के गीत।

नदीम श्रवण का संगीत, समीर की रचना और कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज। ये गीत था फिल्म राजा हिंदुस्तानी का और इस फिल्म में अभिनय किया था अभिनेता के तौर पर आमिर खान ने और अभिनेत्री के तौर पर करिश्मा कपूर ने। ये फिल्म 90 के दशक की एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म रही। करिश्मा कपूर जी की बात करें तो आप 90 के दशक की एक दिग्गज हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री रहीं। आपका जन्म कपूर खानदान में हुआ। कुछ ऐसी फिल्में रहीं जिससे इन्होंने अपार शोहरत हासिल करी, जैसे राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है। इनको पहचान मिली अपने शानदार डांस और बेहतरीन एक्टिंग के लिए। 25 जून सन 1974 को इनका जन्म हुआ मुंबई, महाराष्ट्र में। इनके पिता अभिनेता रणधीर कपूर रहे और मां भी फिल्मों में अभिनय करती थी, नाम था बबीता कपूर। ये प्रसिद्ध कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी की अभिनेत्री रही और इनकी छोटी बहन करीना कपूर ने भी फिल्मों में कदम रखा और एक अभिनेत्री के तौर पर खुद को साबित किया। सन 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से करिश्मा ने अपने फिल्मी करियर को शुरू किया। 90 का दशक वो समय था जब इन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉलीवुड को दी। इनकी बेहतरीन एक्टिंग और शानदार डांस ने दर्शकों को इनकी तरफ खींचा। सन 1996 में राजा हिंदुस्तानी फिल्म के लिए इन्हें पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। साथ ही दिल तो पागल है फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया सन 1997 में। बीवी नंबर वन और जुबैदा फिल्म को भी काफी पसंद किया गया। फिल्म जुबैदा जो इनकी थी वो सन 2001 में आई और इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। तो आइए सुनते हैं आप ही की फिल्म का गीत और आनंद लेते रहिए कार्यक्रम आज के कलाकार का। आप आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, जो कि आपका अपना रेडियो स्टेशन है, यहां से सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार।

अनसुनी बातें अनकहे अफसाने लाता है, अनसुनी बातें अनकहे अफसाने लाता है, जो सदियों तक गुनगुनाए जाएं वो मीठे तराने लाता है। संगीत से भला बढ़कर कौन है यहाँ, संगीत से भला बढ़कर कौन है यहाँ, संगीत अपने साथ जमाने लाता है। 1990 से लेके सन 2000 तक ये जो दशक था, इसमें जो गीत संगीत जन्मा वो आज भी गुनगुनाया जाता है। सच बात तो यह है कि 70 के दशक का अपना एक अलग महत्व था हिंदी बॉलीवुड में, 80 के दशक का अलग, 90 का अलग। हर जमाने में अलग अलग तराने हुए, उन्हें गाने वाले गुनगुनाने वाले हुए, और जिन फिल्मों में ये गीत बनाए गए उन फिल्मों की कहानियां, उनमें किरदार निभाए गए जो अभिनेता और अभिनेत्री द्वारा, इसके साथ बहुत से ऐसे रोल किए गए, नेगेटिव रोल, साइड रोल्स, मतलब कुल मिलाकर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, हर एक की एक खास भूमिका रही। और इसके बाद हिंदी बॉलीवुड में वो फिल्म निकल कर आई, वो गीत संगीत निकल कर आया। करिश्मा ने अपने करियर की शुरुआत की फिल्म प्रेम कैदी से। आपको योग करना और तैराकी करना काफी पसंद है। इनकी पसंदीदा अभिनेत्री हैं नरगिस और मीना कुमारी। अपने अच्छे काम की बदौलत ही इन्होंने कई फिल्म फेयर पुरस्कार और काफी सम्मान अर्जित किए। आइए कार्यक्रम की समाप्ति पर सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम आज के कलाकार में आपने सुने फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर की फिल्मों के गीत। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। अपने आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी वैशाली शर्मा। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है नशा। श्रोताओं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस भी आज है। नशीली चीजों और पदार्थों के निवारण के लिए हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर सन 1987 से इसे मनाने का फैसला लिया गया और मकसद यही रहा कि लोगों को नशे की बुरी आदत से छुटकारा दिलाया जाए और उन्हें नशे से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाया जाए। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के खिलाफ एक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ये दिवस है। सन 1989 से इसकी पूर्ण रूप से शुरुआत हुई और उसके बाद ये हर वर्ष 26 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। नशा एक ऐसी बुराई है साथियों, जो कि इंसान के शरीर के साथ साथ उसके मन पर भी हमला करती है, उसे मानसिक तौर पर भी कमजोर कर देती है। और इतना ही नहीं, इसके परिणाम स्वरूप

उसकी कार्य करने की क्षमता, उसका जीवन जीने का हौसला, उसका बुद्धि विवेक सब प्रभावित होते हैं। नशे से परिवारों पर भी असर पड़ता है। अगर परिवार का कोई एक सदस्य नशे की बुरी लत में पड़कर अपने कर्तव्य से वंचित रह जाता है, अपने कर्तव्य को भली प्रकार से नहीं करता, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, तो इसका बुरा असर पड़ता है उसकी आर्थिक स्थिति पर, उसकी मन स्थिति पर और साथ साथ उसके परिवार पर। युवावस्था एक ऐसा समय जब तन और मन ऊर्जा से भरपूर रहता है। ये एक ऐसा वर्तमान होता है जिसमें भविष्य के सुनहरे सपने होते हैं और उनको साकार करने की सामर्थ्य भी होती है। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि इस समय का सदुपयोग किया जाए, क्योंकि इस समय पर की जाने वाली मेहनत आजीवन काम देती है। लेकिन बहुत दुख की बात है जब युवा अक्सर नशे की लत के शिकार हो जाते हैं और वे भूल जाते हैं कि वास्तव में उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है नशे का दुष्प्रभाव। ये न केवल स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। हम सभी के लिए परिवार बहुत जरूरी है, हम सभी के लिए प्यार बहुत जरूरी है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और ये चंद सालों का महज सफर होता है। इसमें नशे की लत को बुरी तरह से बचाए रखें, क्योंकि शायद हर इंसान ये चाहता है कि उसके घर में रिमझिम बरसता सावन हो और झिलमिल सितारों का आंगन।

मित्रों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक इस शरीर के साथ रहते हैं, इसी के साथ हम अपना जीवन जीते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं और अपने कार्यों को करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। शरीर के सारे ऑर्गन्स एक मशीन की तरह कार्य करते हैं। समय के साथ साथ इनमें शिथिलता आना, इनका कमजोर पड़ना भी स्वाभाविक है, लाजमी है। लेकिन हम अपने अच्छे व्यवहार से, व्यवस्थित दिनचर्या से, बेहतरीन कार्यप्रणाली से और सकारात्मक सोच से अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। शरीर का हर अंग अपने साथ एक जिम्मेदारी निभाता है और जब सभी अंग अच्छे से अपना कार्य करते हैं तो उनके बीच अच्छा तालमेल बैठता है और उसके परिणाम स्वरूप हम स्वस्थ रहते हैं। शरीर का एक अंग भी अगर अपना कार्य अच्छी तरह से करना बंद कर दे या उसमें कोई खराबी आ जाए तो इससे पूरा शरीर प्रभावित होता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की अगर बात करें तो नशे के गंभीर दुष्प्रभाव इस तरह से हैं कि अंगों की क्षति करने में नशे का बहुत बड़ा हाथ होता है। शराब और ड्रग्स के अत्यधिक सेवन से लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम हृदय और फेफड़ों की बात करें तो धूम्रपान और नशीले पदार्थों से श्वसन तंत्र बुरी तरह से प्रभावित होता है, जिससे फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है और दिल का दौरा पड़ने का जोखिम भी बहुत बढ़ जाता है। इन्फेक्शियस डिसीज यानी कि संक्रामक रोगों की अगर बात करें तो नशा करने के लिए जो सुइयां इस्तेमाल की जाती हैं उनसे एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियां फैल सकती हैं। कुल मिलाकर ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान रूपी इस जीवन को अगर हम नशे की लत से ग्रस्त करते हैं, इसको नशे में डालते हैं, तो हम अपने महत्वपूर्ण अंगों को खतरा पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहे होते हैं। मानसिक बीमारियों की अगर बात की जाए तो नशे की लत से कभी कोई सकारात्मक सोच पैदा नहीं होती। कभी किसी गम में या दुख में नशे का सहारा लेकर इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। ये एक ऐसा गड्ढा है जिसमें वो और ज्यादा धंसता चला जाता है। कई बार लोग तनाव की स्थिति में, असफलता की स्थिति में या जीवन में कोई बड़ा नुकसान या कुछ खोने की वजह से नशे का सहारा लेते हैं, जबकि वो ये बात भूल जाते हैं कि नशा उन्हें कभी भी किसी परिस्थिति से या परेशानी से उबारता नहीं है, बल्कि वो उनकी हालत को और भी ज्यादा खराब कर देता है। नशा जिंदगी नहीं बल्कि मौत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। साथियों, जिंदगी में एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहला जरूरी है सकारात्मक सोच। अगर आप चाहें तो आप नशे को छोड़ सकते हैं। सबसे पहले अपने अंदर से ये दुविधा निकाल दें कि ऐसा संभव नहीं है। इंसान की इच्छा शक्ति के सामने बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियां भी कमजोर पड़ जाती हैं और इतिहास इस बात का गवाह है कि इंसान ने अपनी

0: इच्छा शक्ति से बहुत कुछ कर दिखाया है। सकारात्मक सुने, पॉजिटिव रहें, अच्छा खाएं, पर्याप्त नींद लें, अपनी दिनचर्या अच्छी रखें, अपने साथ साथ अपनों के लिए जिए, अपनों के बारे में सोचें और सुनते रहें प्यारा सा संगीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: ये तेरी मेरी यारी, ये दोस्ती हमारी। अभी आपने सुना ये गीत, आवाजें थी सुरेश वाडेकर और मोहम्मद अजीज की। अक्सर लोग यारी दोस्ती में भी नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, शायद मैंने कुछ गलत नहीं कहा। कई बार कुछ लोगों को नशे की लत नहीं होती, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कई बार उनके फ्रेंड सर्कल में उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके साथी ही उनको इस चीज के लिए उकसाते हैं और धीरे धीरे करके वो भी इस लत की शिकार हो जाते हैं, लत का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए श्रोताओं, किसी भी तरह का आनंद लेने के लिए या खुश होने के लिए आपको नशे की जरूरत नहीं है। नशा मानसिक और भावनात्मक तौर पर बहुत बुरा प्रभाव आपकी सेहत पर डालता है। मानसिक बीमारियों की अगर बात की जाए तो नशे की लत से तनाव, बहुत ज्यादा चिंता, डिप्रेशन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। इसके साथ साथ स्मरण शक्ति का धीरे धीरे कमजोर होना भी इसमें शामिल है। दिमाग पर सीधा असर पड़ने से सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, क्षीण होती जाती है और आपकी याददाश्त भी कमजोर होती जाती है। अगर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की बात करें, जी हाँ, सोशल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो नशे का इससे सीधा सीधा संबंध है। नशे की वजह से इंसान अपने होशो हवास में नहीं रहता, अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, अपना आपा खो देता है। उसे सही और गलत की पहचान नहीं रहती, गलत समय पर गलत तरह की प्रतिक्रियाएं देता है। इसके बावजूद रिश्तों में खटास, कड़वाहट और तनाव का पैदा होना लाजमी है। अपनी जिम्मेदारियों को वो अच्छी तरह से नहीं निभाता। जो लोग उससे जुड़े होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, पति, पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, ऐसे में जब वो अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से नहीं निभाता है तो घर वालों का गुस्सा भी उसके लिए लाजमी है, सबकी नाराजगी भी उसके लिए लाजमी है, क्योंकि अपने वही होते हैं जो आपका भला चाहें। और जब उसको किसी भी नशे से ग्रस्त व्यक्ति को इस बात के लिए टोका जाता है तो वो इसे स्वीकार नहीं करता। कुल मिलाकर उसका संतुलन बिगड़ जाता है और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो पारिवारिक कलह की स्थिति पैदा हो जाती है। इसमें घरेलू हिंसा, रिश्तों में खटास और अलगाव जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। आर्थिक बर्बादी की अगर बात करें तो नशे की लत इंसान को किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षम नहीं बनाती। हम किसी भी कार्य को तभी अच्छे से कर पाते हैं जब हम फिजिकली और मेंटली फिट हों और पूरी तरह से शरीर और मन का, दिमाग का संतुलन बनाकर उस काम में अपने आप को लगाएं। लेकिन जब इंसान का शारीरिक और मानसिक संतुलन ही नहीं रहेगा तो वो अपने किसी भी कर्तव्य को अच्छी तरह से नहीं निभा पाएगा, चाहे वो घर में हो या बाहर हो। नतीजा यही होता है कि वो कोई काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता। इससे उसकी, उसके करियर पर, उसकी ग्रोथ पर, उसके कार्यस्थल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। लोग उससे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और

वो आर्थिक तौर पर भी कमजोर होने लग जाता है। काम में मन नहीं लगता, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, जिसके कारण करियर और रोजगार पर इसका सीधा संबंध है। अब बात आती है कि इस परेशानी से निकला कैसा जाए, कैसे जाए, इसमें क्या सुधार हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। तो आपको बता दें साथियों कि नशे की लत एक बुरी बीमारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सही समय पर इलाज और इच्छा शक्ति से इससे बाहर निकला जा सकता है। अगर आपको किसी भी चीज का शौक है नशे के अलावा, जी हाँ मैं नशे की बात नहीं कर रही हूं, अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, कोई भी टैलेंट है जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो उसमें अपना मन लगाने की कोशिश करें। धीमे धीमे जिंदगी को सकारात्मक तरीके से देखें, उन कार्यों को करें जिन्हें करने में आपको खुशी मिलती है। अपना मनपसंद खाना खाएं, बाहर घूमने जाएं, कुछ समय अपने लिए निकालें और याद रखें कि जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ गंवाने की भूल ना करें। इसी के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब संपन्न होता है। अपने रेडियो साथी वैशाली शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। मीडियम वेव के मीटर्स पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आइए आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: बदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल

0: गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Happy birthday to you!

0: open.
1: Thank you.
0: How are you?
1: Happy birthday, Stephen. Thank you.
2: Congratulations.
1: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
3: Oh, fine.
1: Thanks for coming in. Please come in. Please.
0: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
3: Come. John, please come here.
0: Oh, sure.
1: Join us for a drink, please.
4: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
5: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड, ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।

0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
1: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.

0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
2: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
3: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
4: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
5: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए

0: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस फहरी नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
1: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
2: हाँ।
1: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
3: आग का गोला?
1: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
2: सूरज।
1: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
4: बहुत आसान पूछते हो।
1: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
4: अगली बार में बहुत मुश्किल।
1: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
2: हाँ।
1: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
4: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
1: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
5: वो तारा होता है।
1: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
6: वो रात और दिन भी बनाता है।
1: एकदम सही एकदम सही।
7: वो हमें धूप भी देता है।
1: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
4: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
1: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
4: विटामिन डी।
1: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
7: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
1: हाँ बिल्कुल।
4: पेड़ों को खाना भी देता है।
1: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
4: धीरे धीरे घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
1: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
4: हाँ।
6: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
1: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
4: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
1: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
4: वो तेज चलती है, तो ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
7: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
1: ना।
7: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
1: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
4: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
1: बहुत बड़ा होता है
7: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
1: हम क्योंकि कहीं
4: दूर होता है, इसलिए
1: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देख लें।
4: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ
7: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
2: सर्दी।
1: ओह ऐसी वाली सर्दी ना। हाँ। अच्छी लगती है सर्दी?
4: हाँ। पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
7: नहीं
1: है।
7: करता।
1: सूरज आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता है।
2: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
2: धरती काटे चक्कर इसके।
1: लगे ये चलता जाता है।
2: लगे ये

0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
1: सर्दी गर्मी बनते इससे,
0: ये दिन रात बनाता है,
1: ये दिन रात बनाता है,
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मौसी कर पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
2: वो भी दस पूछेंगे,
0: दस पहेलियाँ। चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: मौसी
0: डर जाती है।
2: और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे,
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग
6: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। हर्षित सक्सेना के आवाज में फिल्म मर्डर 2 का ये गीत सुनिए। सईद कादरी की रचना, संगीत विशेष फिल्म्स

अभी आपने सुना अंकित तिवारी और ध्वनि भानुशाली की आवाज में बाटला हाउस फिल्म का ये गीत। शब्द थे प्रिंस दुबे के और संगीत था अंकित तिवारी का।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

सुनिधि चौहान और विशाल के स्वर में आइए सुनते हैं गीतकार विशाल का लिखा और संगीतकार विशाल शेखर का संगीत से सजा हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है कैश।

शेफ फिल्म से अरमान मलिक की आवाज में रश्मि विराग का लिखा हुआ गीत आपने सुना। संगीत निर्देशन था अमाल मलिक का। इसी के साथ कार्यक्रम नई तरह ने अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत तैयार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है और इसे जीतनी भी है। गृहमंत्री ने कहा कि हमें ड्रग्स के व्यापारियों के प्रति सख्त रवैया अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना होगा।
1: ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण, एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। भारत ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच हरित और सतत विकास की साझेदारी सफल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की है कि इस पर जल्द सहमति बनेगी। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकसित विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन

उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया के बरहज और रुद्रपुर असेंबली हलकों में 456 करोड़ रुपए से ज्यादा के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा और मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि तरक्की और अवामी बहबूद की ये मुहिम हर खानदान की जिंदगी में नई उम्मीदों, नए मौके और नई खुशहाली की बुनियाद बनेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वजीर ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ज़रई रोड मैप, ज़राअत के शोबे में मरकजी और रियासती मुख्तलिफ स्कीमों के निफाज और देही तरक्की के प्रोग्रामों का मुश्तरका जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने मरबूत काश्तकारी को फरोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि किसानों को मेयारी पौधे फराहम करने के लिए लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर कायम किया जाएगा।
1: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: मरकजी वजीर ने कहा कि एक खुशहाल उत्तर प्रदेश तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर उन्होंने चने, दाल और सरसों की सरकारी खरीदारी की मुद्दत में तौसी की भी मंजूरी दी। वजीर आला ने इसके लिए मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे रियासत के ज्यादा से ज्यादा किसानों को अपनी पैदावार कम अज कम इमदादी कीमत पर फरोख्त करने का मौका मिलेगा और उनके मफादात के बेहतर तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सकेगा। मीटिंग के दौरान अलनीनो के असरात से निमटने के हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकजी और रियासती हुकूमत के सीनियर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से ज्यादा के 149 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। तकरीब

कार्यक्रम घर संसार सुन रही मेरी सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर घर, हर परिवार और पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। जी हाँ बहनों, विषय है महिला बनी नशा मुक्ति की ताकत। क्योंकि बहनों, नशा सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे पूरे परिवार को तोड़ देती है। घर की खुशियां छीन जाती हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और सबसे ज्यादा असर पड़ता है बच्चों के भविष्य पर। लेकिन इसी अंधेरे में एक रोशनी भी है और वो है महिला, घर की महिला और उसकी शक्ति। एक महिला, चाहे वो माँ हो, पत्नी हो या बहन, उसके पास वो संवेदनशीलता और समझ होती है जो किसी भी व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकती है। हमने कई बार देखा है कि जहाँ परिवार हार मान लेते हैं, वहीं एक महिला अपनी हिम्मत और धैर्य से नशे में डूबे इंसान को नई जिंदगी दे जाती है। बहनों, हम महिलाएं ना अगर कुछ ठान लें तो हम सिर्फ अपने घर को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को नशा मुक्त बना सकती हैं। आज जरूरत है कि महिलाएं आगे आएं, जागरूकता फैलाएं, अपने बच्चों को सही राह दिखाएं और अगर परिवार में कोई इस लत का शिकार है तो उसे प्यार, समझदारी और डॉक्टरी सहायता से नशे के दलदल से बाहर निकालें। क्योंकि डांट से नहीं बल्कि समझ और साथ से बदलाव आता है। हम सभी को ये समझना होगा बहनों कि नशा मुक्ति की शुरुआत घर से ही होती है और उस घर

की सबसे मजबूत नींव होती है एक महिला। इसलिए आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने घर अपने समाज को नशा मुक्त बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जब महिला मजबूत होती है तो ही समाज अपने आप मजबूत हो जाता है। ये थी बात आज नशा मुक्ति से दूर करने में महिलाओं की ताकत की। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: तो बहनों, ये तो थी बात अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। बहनों, प्रेम हम सभी करते हैं। हम सभी ने जीवन में किसी न किसी से प्रेम किया है। प्रेम कोई शब्द नहीं जो सिर्फ कह दिया जाए, ये तो वो एहसास है जो बिना कहे भी समझ लिया जाए। प्रेम में अधिकार नहीं, अपनापन होता है। दूरी चाहे कितनी भी हो, दिल से हम हमेशा पास ही होते हैं। यहाँ स्वार्थ समाप्त हो जाता है, वहीं पर प्रेम शुरू होता है। तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही एक प्रेम भरी वाणी में काव्य पाठ निभा कुमारी द्वारा।
1: नमस्कार। मेरा बचपन मथुरा की पावन रज में पल्लवित हुआ है, तो मैं भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के श्री चरणों से उस पावन प्रेम से चार पंक्तियां स्टार्ट करना चाहती हूँ, आरंभ करती हूँ। सुनिएगा कि

तुमसे पाया है जीवन में खुशियों का उपहार, तुम ही आशाओं का विस्तार, तुम ही आशाओं का विस्तार।

जीवन पथ पर वचन हृदय को दिया हृदय ने सतरंगी फूलों सा कुसुमित किया स्वयं को प्रेम निलय ने अनहद ना।

0: सुनने, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रेम यदि राधा सा हो तो प्रतीक्षा भी पूजा बन जाती है, प्रेम यदि कृष्ण सा हो तो हर धड़कन बांसुरी की धुन सुनाती है। जहां मैं समाप्त हो जाए और तुम ही संसार बन जाओ, वहीं से राधा कृष्ण के प्रेम की अनंत यात्रा शुरू होती है। अभी हमने सुना निभा कुमारी के की भावपूर्ण काव्य पाठ। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। बहनों, मेरी पहचान के इस अंक में मैं आपको एक ऐसी महिला से रूबरू कराने जा रही हूं जिनकी पहचान सिर्फ एक लेखिका के रूप में नहीं बल्कि एक बेबाक और सशक्त आवाज के रूप में भी है, और वो हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय बहनों एक ऐसा नाम है जो साहित्य की दुनिया में ही नहीं बल्कि समाज के हर उस मुद्दे में गूंजता है जहां सच को बोलने की हिम्मत चाहिए होती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। इस उपन्यास के लिए उन्हें बुकर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो ये साबित करता है कि उनकी लेखनी में कितनी

गहराई और प्रभाव है। लेकिन अरुंधति राय की पहचान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो एक ऐसी लेखिका हैं जो समाज के ज्वलंत मुद्दों जैसे कि असमानता, अन्याय, पर्यावरण और मानवाधिकार पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया, चाहे वो कितनी ही कठिन क्यों ना हो। उनकी सबसे बड़ी ताकत है बेबाकी और संवेदनशीलता का संगम। अरुंधति राय हमें यह सिखाती हैं कि अगर आपके पास सोच है, शब्द हैं और हिम्मत है तो आप दुनिया को बदलने की शुरुआत कर सकते हो। उनकी पहचान हमें ये बताती है कि महिला सिर्फ घर तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो अपनी आवाज़ से समाज को दिशा दे सकती है। आज जब हम अपनी पहचान खोजने की कोशिश करते हैं तो अरुंधति राय जैसी शख्सियत हमें प्रेरणा देती हैं कि हम भी अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करें। तो बहनों, अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी पहचान सिर्फ मेरा नाम नहीं, मेरी सोच, मेरी आवाज और मेरे विचार हैं, और इसी पहचान को मजबूती से जीने का एक नाम बनी है अरुंधति रॉय, जो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो ये थी बात आज मेरी पहचान में अरुंधति राय की। अभी सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: तो बहनों अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट कुछ तुम कहो कुछ हम की तरफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरिता जी, जो कि एक गृहिणी होने के साथ साथ अपना छोटा सा व्यवसाय भी अपने घर से चला रही हैं। हम उनसे जानेंगे कि एक आम भारतीय महिला के लिए आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सरिता जी हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद शिवांगी।
0: मेरा सबसे पहला प्रश्न आपके लिए बस यही है कि आपके लिए आत्मनिर्भरता का सबसे सरल और सच्चे मायने क्या है।
1: देखिए, मेरे लिए आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसे कमाना नहीं
0: जी,
1: बल्कि अपने फैसले खुद लेने की आजादी है, खुद पर भरोसा रखना है
0: जी।
1: जब एक महिला अपने छोटे छोटे काम भी आत्मविश्वास से करने लगती है
0: जी,
1: जैसे घर का मैनेजमेंट, बच्चों की पढ़ाई या अपने लिए समय निकालना, तो वहीं से आत्मनिर्भरता की शुरुआत हो जाती है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
1: पैसे कमाना उसका एक हिस्सा है
0: जी,
1: पर असली बात है अपनी पहचान का एहसास।
0: बिल्कुल, कि कहीं ना कहीं पैसे कमाना तो बहुत जरूरी है ही, पर अपनी असली पहचान होना भी बहुत जरूरी है। आपने अपनी आत्मनिर्भरता की शुरुआत कैसे की, कोई छोटा सा अगर आपका कोई अनुभव हो जो दूसरी महिलाओं को प्रेरित कर सके तो वो भी साझा करें।
1: बिल्कुल, मेरे पास बड़ा सेटअप नहीं था
0: जी,
1: बस घर पर बैठे बैठे मैंने पापड़ और अचार बनाना शुरू किया
0: जी।
1: शुरुआत में तो केवल पड़ोस की महिलाएं लेती थी, पर धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा। सबसे खास बात यह थी कि जब पहली बार मैंने अपने पैसों से अपने बेटे के लिए कुछ खरीदा
0: जी,
1: उससे लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ, बड़ा सोचने से पहले अपने छोटे सपनों को जगह दीजिए, रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं।
0: वाह, क्या खूब बात कही आपने कि बड़ा सोचने से पहले अपने छोटे छोटे सपनों को जगह दीजिए, रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। अच्छा, उन महिलाओं के लिए आपका संदेश क्या होगा जो काम शुरू करना चाहती हैं पर कहीं न कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रही?
1: मैं यही कहना चाहूंगी
0: जी,
1: अपने आप को कम मत आंकिए। हमें घर की हर छोटी बड़ी चीज चलाने का इतना अनुभव होता है
0: जी,
1: कि चाहे खाना बनाना हो, सिलाई हो, बच्चों की देखभाल हो या सोशल मीडिया चलाना, हर चीज में हमारे पास स्किल है, बस पहला कदम बढ़ाइए।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो देखा बहनों कि सरिता जी ने एक छोटा कदम बढ़ाया और आज वो आत्मनिर्भर महिला है और ना जाने कितनी ही महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी। तो बस आप भी एक छोटा सा कदम बढ़ाइए और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाइए। तो बहनों ये तो था कुछ तुम कहो कुछ हम में आज की बात। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट फैशन ब्यूटी की तरफ। चूंकि हम सभी का, हम सब भारतीयों का सबसे पसंदीदा जो परिधान होता है वो साड़ी होती है, तो आज फैशन ब्यूटी में हम बात करने वाले हैं साड़ी की, जो कि भारतीय नारी की पहचान भी है। एक ऐसा विषय बहनों जो सिर्फ फैशन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान से भी जुड़ा हुआ है। साड़ी, भारतीय नारी की पहचान। फैशन की दुनिया में हर दिन नए नए ट्रेंड आते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं बहनों जो कभी पुरानी नहीं होती, और साड़ी, साड़ी उन्हीं में से एक है। साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि भारतीय नारी की गरिमा, शालीनता और सुंदरता का प्रतीक भी है। जब एक महिला साड़ी पहनती है ना, तो उसमें वो अलग ही आत्मविश्वास छलकता है, एक सादगी, एक नजाकत और एक खास पहचान। चाहे त्योहार हो, शादी हो या कोई खास अवसर, साड़ी हर मौके पर खुद को सबसे अलग और खास बना देती है। आज भले ही वेस्टर्न फैशन का दौर हो, लेकिन साड़ी का आकर्षण आज भी उतना ही मजबूत है। बल्कि आज की नई पीढ़ी ने तो साड़ी को नए अंदाज में अपनाकर से और भी ट्रेंडी बना दिया है। नए नए एक्सपेरिमेंट साड़ी के साथ भी हो रहे हैं, और क्यों ना हो, लड़कियां साड़ी पसंद जो करती हैं। हम सभी भारतीयों के दिल में जो बसती है साड़ी, मैंने साड़ी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमारी परंपरा से, हमारी संस्कृति से जोड़ती है। सच तो ये है कि साड़ी में सजी नारी सिर्फ सुंदर नहीं लगती बल्कि अपनी संस्कृति को गर्व से जीती हुई नजर आती है। तो आइए हम अपनी इस खूबसूरत पहचान को और अपनाएं और गर्व से कहें कि साड़ी ही है भारतीय नारी की सच्ची पहचान। ये थी आज फैशन ब्यूटी।

0: बातें, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें।

0: और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: बहनों अब वक्त है रेसिपी का, रेसिपी टाइम का, और आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जो बनने में भी आसान है और स्वाद में भी बहुत ही उम्दा। तो चलिए मैं बताती हूँ आज की रेसिपी के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आज की रेसिपी है रागी रवा उपमा। दो लोगों के लिए इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम रागी रवा, 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच राई, 1 प्याज कटा हुआ, 1 चम्मच उड़द दाल, 1/4 चम्मच गाजर, 1/4 कप गाजर और शिमला मिर्च कटी हुई, 1/4 कप टमाटर कटा हुआ, 6 से 8 करी पत्ते, 2 कप पानी और स्वाद अनुसार नमक, और हाँ 1 चम्मच नींबू का रस मत भूलेगा और साथ में हरा धनिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रागी रवा को हल्का सा ड्राई रोस्ट या थोड़ा सा तेल डालकर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनें और फिर उसे निकाल लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करें, उसमें राई डालें और जब राई तड़कने लगे तो उसमें प्याज हरी मिर्च डालकर हल्का सौते करें। अब उड़द की दाल डालकर हल्का भूनें, फिर शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, करी पत्ता डालकर थोड़ा सा और भूनें। अब इसमें पानी डालें, नमक और नींबू का रस मिलाएं, उबाल आने दें। जब उबाल आ जाए तो उसमें रागी रवा डालें और अच्छे से मिक्स करें। मिक्सचर को ढककर 2 मिनट लो फ्लेम पर पकाएं और बस तैयार है रागी रवा उपमा। अब आप इसमें कटा धनिया डालकर इसे सर्व करें और एंजॉय करें। तो बहनों ये थी आज की सुपर टेस्टी और हेल्दी रागी रवा उपमा की रेसिपी। हमने बातें तो बहुत कर ली हैं, आज मुहर्रम है और मुहर्रम के पावन अवसर पर हम हजरत इमाम हुसैन के त्याग, सत्य, साहस, इंसानियत के संदेश को भी नमन करते हैं। फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

महिलाएं सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर संसार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे डॉक्टर मेघा तलेगांवकर की आवाज में गीत और भजन।

तो बहनों, मुहर्रम हमें सत्य, त्याग, धैर्य और इंसानियत की राह पर अडिग रहने का संदेश देता है। इसी विश्वास और शुभकामना के साथ आज के घर संसार से हमें अनुमति दीजिए, क्योंकि समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। फिर होगी मुलाकात नई सोच, नए विषय और नई प्रेरणाओं के साथ। आज के लिए इतना ही। आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे का आपको नमस्कार।

ही जिंदगी में हम तुम संयोग ऐसा पाएं। बलबीर सिंह रंग की लिखी हुई ये रचना आपने सुनी डॉक्टर मेघा तलेगांवकर की आवाज में। अब सुनिए ये भक्तिमय प्रस्तुति जिसे लिखा है ब्रह्मानंद ने। बोल है राम तेरी रचना अचरज भरी। आवाज है डॉक्टर मेघा तलेगांवकर की।

0: उत्तर प्रदेश पुलिस अरेस्ट 8 पीपल इन कनेक्शन विद राम मंदिर डोनेशन एम्बेजलमेंट केस. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान. कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा. उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया. भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया. T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से. टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें. और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया. अब समाचार विस्तार से. गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है. उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की. श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की.
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है. आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय. और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए.
1: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं. उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा.
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं. ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है. इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी.
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की. उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई. शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी. SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया. केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं. इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है. इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की

0: हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे।

0: और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों

0: के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए बेगम परवीन सुल्ताना का गायन राग भैरवी में।

बेगम परवीन सुल्ताना का गायन अभी आप सुन रहे थे राग भैरवी में, और अब सुनिए पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में राग भैरवी पर आधारित ठुमरी।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में राग भैरवी पर आधारित ठुमरी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, आप सुनिए पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। फिल्म कारवां से सुनिए ये गीत, संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने, गीत रचना है मजरू की, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

फिल्म कारवां से सुना आपने ये गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आप सुनिए ये अगली पेशकश जीएम दुरानी और लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म साहिर से।

0: फिल्म नया दौर का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। इसी के साथ भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए नात ए पाक, कलाम है हाजी मोहम्मद गालिब रसूल दानिश का।
1: बहुनूर हजरत हुसैन अली सलाम की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ। फकरे दी ए नाजी से आदम हुसैन।

حسین حریت کے محسن اعظم، حسین حریت کے محسن اعظم، حسین فخر دین اے

मना तेरा रहू सर कटा करू रखुली, सर कटा करू जी की रखुली आबरू, सर कटा करू जी की रखुली आबरू, सर कटा करू जी की रखुली आबरू, राधाए ये माँ बना तेरा लहू फख्र भी है नाज़ से आदम हुसैन, हुर्रियत के मोहसिन आदम हुसैन तेरी कुर्बानी शाही कायनात, तेरी कुर्बानी ने शाही कायनात, तेरी कुर्बानी ने शाही कायनात, एक नई इस्लाम को बख्शी हयात, तेरी कुर्बानी ने शाही कायनात, एक नई इस्लाम को बख्शी हयात, गाज़ाए इमाम बना तेरा लहू सर कटा कर दी की रखली आबरू, हुर्रियत के मोहसिन आजम हुसैन, फख्रे दी एलाज़ से आदम हुसैन, फख्रे दी एलाज़ से आदम हुसैन, फख्रे दी एनाज़ से आदम हुसैन, हुर्रियत के मोहसिन आदम हुसैन, हुर्रियत के तेरी कुर्बानी ने शाहे कायनात, एक नई इस्लाम को बख्शी हयात, फख्र दी एनाज़ से आदम हुसैन, हुर्रियत के

आदम हुसैन तेरा गम है ताजगी इस्लाम की, या हुसैन या हुसैन या हुसैन तेरा गम है ताजगी इस्लाम की, तेरा गम है ताजगी इस्लाम की, तेरा गम है ताजगी इस्लाम की, तेरा गम है ताजगी इस्लाम की, एक नई इस्लाम को बख्शी हयात फकरे दी है नाजी से, आदम हुसैन हुर्रियत के मोहसिने, आदम हुसैन तेरा गम है ताजगी इस्लाम की, सैयदना हजरत हुसैन तेरा गम है ताजगी इस्लाम की, तेरा गम है ताजगी इस्लाम की, तेरा मातम जिंदगी इस्लाम की, तेरा गम है ताजगी इस्लाम की, तेरा मातम जिंदगी इस्लाम की, गाजिये ईमा बना तेरा लहू सर कटा कर दी की रख लिया बुरू, तेरी कुर्बानी ने शाहे कायनात एक नई इस्लाम को बख्शी हयात फकरे दी है नाजिशे, आदम हुसैन हुर्रियत के मोहसिने, आजम हुसैन तेरा गम है ताजगी इस्लाम की, तेरा मातम जिंदगी इस्लाम की, ऐ हुसैन ऐ हुसैन ऐ अहले ईमान के इमाम, ऐ हुसैन ऐ अहले ईमान के इमाम, जिंदाओं का जिंदा है तेरा पयाम, जिंदाओं का जिंदा है तेरा पयाम, ऐ हुसैन ऐ अहले ईमान के इमाम, जिंदाओं का जिंदा है तेरा पयाम, फख्रे दिए नाज़िशे आदम हुसैन हुर्रियत के मोहसिने, आज़म हुसैन गाज़ाए ईमां बना तेरा लहू सर कटा कर दी की रख ली आबरू, ऐ हुसैन ऐ अहले ईमां के इमाम, जिंदाओं का जिंदा है तेरा पयाम, ऐ हुसैन ऐ अहले ईमां के इमाम, जिंदाओं का जिंदा है तेरा पयाम, अपने दानिश पर कर्म की एक नजर, सैयदे वाला इमाम बहरो बर, अपने दानिश पर कर्म की एक नजर, सैयदे वाला इमाम बहरो बर, है हुसैन है अहले ईमां के इमाम, जिंदाओं का जिंदा है तेरा पयाम, अपने दानिश पर कर्म की एक नजर, या हुसैन अपने दानिश पर कर्म की एक नजर, सैयदे वाला इमाम बहरो बर, अपने दानिश पर कर्म की एक नजर, सैयदे वाला इमाम बहरो बर।

0: Up ne down isi barın kavramı ki yıkılmasın. Sayyade vada imami beheru barı. Fakreddin hey dağız işi adamı Hüseyin. Hürriyeddin Muhsin'in adamı Hüseyin.
1: आप सुन रहे थे नाते पाक, कलाम था हाजी मोहम्मद गालिब रसूल दानिश का, और अब सुनिए कलाम शायर में मर्सिया, कलाम है सलीम अहमद एटली का।
2: सामईन, ये मुहर्रम उल हराम का महीना है, इसे इस्लाम में सबसे ज्यादा हुरमत वाला महीना माना गया है। इसके नाम से ही इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाता है। वक्त नामालूम तक इसकी हुरमत बरकरार रहेगी। यह महीना आर्मी से पानी को छुआ न पिया एक भी कतरा, पानी को छुआ न पिया एक भी कतरा, असगर की तिश्नगी ने उन्हें पीने न दिया। पानी को छुआ पर न पिया एक भी कतरा, असगर की तिश्नगी ने उन्हें पीने न दिया। बाजू भी कटे जिस्म हुआ जख्मों से छलनी, बाजू भी कटे जिस्म हुआ जख्मों से छलनी, पर परचमे शमशीर को झुकने न दिया, पर परचमे शमशीर को झुकने न दिया। समय कुछ और अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ, कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ, कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ कि अपनी प्यास की शिद्दत बढ़ाओ, कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ कि अपनी प्यास की शिद्दत बढ़ाओ। मदीना छोड़कर अब चल पड़े हैं, मदीना छोड़कर अब चल पड़े हैं, सफर की सिमत में कदमों को लाओ, सफर की सिमत में कदमों को लाओ, सफर की सिमत में कदमों को लाओ। धधकती रेत पर खेमे खड़े हैं, धधकती रेत पर खेमे खड़े हैं, तपन सहने का अब जज्बा जगाओ, तपन सहने का अब जज्बा जगाओ। कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ कि अपनी प्यास की शिद्दत बढ़ाओ। अलम अब्बास का ऊंचा रहेगा, अलम अब्बास का ऊंचा रहेगा, वफा के दीप तुम दिल में जलाओ, वफा के दीप तुम दिल में जलाओ। हुसैनी अज्म तो झुकता नहीं है, हुसैनी अज्म तो झुकता नहीं है, यजीदी जुल्म की दुनिया ढहाओ, यजीदी जुल्म की दुनिया ढहाओ। कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ कि अपनी प्यास की शिद्दत बढ़ाओ। गले पर तीर खाकर हंस दिए थे, गले पर तीर खाकर हंस दिए थे, अली असगर का चेहरा याद लाओ, अली असगर का चेहरा याद लाओ। गले पर तीर खाकर हंस दिए थे, अली असगर का चेहरा याद लाओ। कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ, कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ कि अपनी प्यास की शिद्दत बढ़ाओ। वो जैनब की बुका और शाम का गम, वो जैनब की बुका और शाम का गम, तसव्वुर में जरा वो जुल्म लाओ, तसव्वुर में जरा वो जुल्म लाओ। कटे बाजू मगर गैरत न छोड़ी, कटे बाजू मगर गैरत न छोड़ी, वफादारी का वो परचम उठाओ, वफादारी का वो परचम उठाओ। जमी रोई तड़प उठा समंदर, जमी रोई तड़प उठा समंदर, गमे सरवर में तुम आंसू बहाओ, गमे सरवर में तुम आंसू बहाओ। कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ, कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ कि अपनी प्यास की शिद्दत बढ़ाओ, कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ कि अपनी प्यास की शिद्दत बढ़ाओ। अली अकबर की वो बरछी का मंजर, अली अकबर की वो बरछी का मंजर, कलेजे पर जरा वो जख्म खाओ, कलेजे पर जरा वो जख्म खाओ। सिपर कोई नहीं तलवार कोई, सिपर कोई नहीं तलवार कोई, फकत सजदे में तुम गर्दन कटाओ, फकत सजदे में तुम गर्दन कटाओ। सलामत है आजादारी जहां में, सलामत है आजादारी जहां में, मसाइब करबला के सब सुनाओ, सलामत है आजादारी जहां में।

0: कर्बला के सब सुनाओ, कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ कि अपनी प्यास की शिद्दत बढ़ाओ। नजर आता है जो रोते हुए बस, नजर आता है जो रोते हुए बस, गमे आशूर का मंजर दिखाओ, गमे आशूर का मंजर दिखाओ। लिखो अहमद मकातिल कर्बला के, लिखो अहमद मकातिल कर्बला के, कि अब आंखों से एक दरिया बनाओ, कि अब आंखों से एक दरिया बनाओ। कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ, कभी पानी से कुछ दूरी बनाओ, कि अपनी प्यास की शिद्दत बढ़ाओ। सामईन, एक मर्सिया के कुछ बंद और हाजिर करता हूं। कर्बला की वो जमी वो सितम याद करो, कर्बला की वो जमी वो सितम याद करो, कर्बला की वो जमी वो सितम याद करो। वक्त की उजड़ी हुई दुनिया का गम याद करो, वक्त की उजड़ी हुई दुनिया का गम याद करो। कर्बला की वो जमी वो सितम याद करो, वक्त की उजड़ी हुई दुनिया का गम याद करो। कितने फाकों से वो गुजरे वो नबी के प्यारे थे, कितने फाकों से वो गुजरे वो नबी के प्यारे थे। उन यतीमों का असीरों का अलम याद करो, उन यतीमों का असीरों का अलम याद करो। कर्बला की वो जमी वो सितम याद करो। गर्म रेती पे जो सजदे में झुकाया सर था, गर्म रेती पे जो सजदे में झुकाया सर था, सामने जालिम था उसके हाथ में खंजर था, सामने जालिम था उसके हाथ में खंजर था। प्यार जिसने था किया खाके सफा से अपनी, प्यार जिसने था किया खाके सफा से अपनी, वह मोहम्मद का नवासा था कौम का सरवर था, वह मोहम्मद का नवासा था कौम का सरवर था, वह मोहम्मद का नवासा था कौम का सरवर था। सामिन, एक हमद से कुछ अशआर आपकी खिदमत में और पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा करें। नहीं सानी है कोई तेरी कुदरत का जमाने में, नहीं सानी है कोई तेरे कुदरत का जमाने में, हजारों मौजे रखे तेरे इस कारखाने में। नहीं सानी है कोई तेरी इस कुदरत का जमाने में, हजारों मौजे रखे तेरे इस कारखाने में। फकत तेरी ही रहमत है सही सालिम में सोता हूँ, फकत तेरी ही रहमत है सही सालिम में सोता हूँ। करम तेरा मेरे मौला सही सालिम जगाने में, करम तेरा मेरे मौला सही सालिम जगाने में। नहीं सानी है कोई तेरी कुदरत का जमाने में, सवेरे रोज सुनता हूँ परिंदों की जो आवाजें, सवेरे रोज सुनता हूँ परिंदों की जो आवाजें। झलक तेरी ही कुदरत की, झलक तेरी ही कुदरत की है इनके चहचहाने में, झलक तेरी ही कुदरत की है इनके चहचहाने में। वो एक चींटी हो या गहरे समंदर की बड़ी मछली, वो एक चींटी हो या गहरे समंदर की बड़ी मछली, लगी हैं सारी मखलूकें तेरी ताकत बताने में, लगी हैं सारी मखलूकें तेरी ताकत बताने में। नहीं सानी है कोई तेरी कुदरत का जमाने में, फकत मक्खी से तूने ये शहद बनवा दिया मौला, फकत मक्खी से तूने ये शहद बनवा दिया मौला। वो कैसे रेशमी कीड़ा लगा रेशम बनाने में, वो कैसे रेशमी कीड़ा लगा रेशम बनाने में। अमल से जिंदगी खाली कलम ढूंढे है दानाई, अमल से जिंदगी खाली कलम ढूंढे है दानाई। है हद्दे अक्ल से बाहर जो कुछ तेरे खजाने में, है हद्दे अक्ल से बाहर जो कुछ तेरे खजाने में, है हद्दे अक्ल से बाहर जो कुछ तेरे खजाने में। महज कोशिश ये मेरी है करूं हमदो सना रब की, महज कोशिश ये मेरी है करूं हमदो सना रब की। अगरचे ना अदल में हूं तेरी कुदरत बताने में, अगरचे ना अदल में हूं तेरी कुदरत बताने में। नहीं सानी है कोई तेरी कुदरत का जमाने में, हजारों मौजे रखे तेरे इस कारखाने में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।
1: कलामी शहर में भी आप सुन रहे थे मर्सिया। कलाम था सलीम अहमद एटवी का।

0: उर्दू कार्यक्रम अंजुमन में अब सुनिए मकाला। जिंदगी की रोशनी छीन लेता है नशा। मकाला निगार है सैयद इख्तियार जाफरी।
1: जिंदगी की रोशनी छीन लेता है नशा। मौजूदा दौर की समाजी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई नशा है। ये बुराई जितनी बड़ी, खराब और तकलीफ देह है, इतनी ही तेजी से ये समाज में फैलती जा रही है। नशा ख्वाह शराब पीने के जरिए हो या दीगर ड्रग्स के जरिए, हर हाल में नुकसानदेह, तकलीफ देह और रोके जाने की चीज है। लेकिन इस बुरी आदत को रोकने की जितनी कोशिश की जाती है, उतनी ही तेजी से ये फैलती जा रही है। ये सूरत हाल हर समझदार, जिम्मेदार और अकलमंद इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इंसान को इंसान बनाने वाली चीज उसका किरदार या कैरेक्टर है, जिसे उर्दू में अखलाक कहते हैं। नशा इंसान को अखलाकी पाकीजगी से महरूम करके गंदे कामों, नाशाइस्ता हरकतों और जराइम की दलदल में धकेल देता है। समझदार लोग खूब जानते हैं कि इंसान की रूहानी और बातिनी नापाकी इंसान की जाहरी नापाकी और गंदगी से भी ज्यादा नुकसानदेह है। समाज में आमतौर पर नजर आने वाले जराइम में ज्यादा हिस्सा उन लोगों का है जो व्हाइट कॉलर या सफेद पोश कहलाते हैं। ये लोग जो आला सरकारी ओहदेदार, सियासतदान, कॉरपोरेट अफसरान या आला मायारी लोग कहलाते हैं, सबसे ज्यादा नशे में गर्क होते हैं। फिर इसी नशे की हालत में अपने मातहत अफराद का जिंसी, माली, जिस्मानी और घरेलू इस्तेहसाल करते हैं। ये ऐसे जराइम हैं जो आम तौर पर नजर नहीं आते, लेकिन कितने ही अफराद और खानदानों को तबाह कर रहे हैं। नशे के जो नुकसान हैं वो जाहिर हैं। नशे के लिए सबसे आसान जरिया शराब है। शराब हर मुल्क, हर शहर और अब तो हर गाँव में सबसे आसानी से दस्तियाब होने वाला नशा है। इनमें देसी शराब सबसे ज्यादा हलाकत खेज है। इनके अलावा अफीम, कोकीन, भांग, गांजा, ब्राउन शुगर और मुख्तलिफ नामों से मिलने वाले दीगर ड्रग्स भी समाज में जड़ें जमा चुके हैं। ये नशे इंसान को अंदरूनी तौर पर खोखला, जहनी तौर पर जालिम, जिस्मानी तौर पर कमजोर, अखलाकी तौर पर दिवालिया और समाजी तौर पर बेइज्जत बना देते हैं। नशे की बदमस्ती इंसान से वो गुनाह और जराइम करा लेती है जो होशो हवास रखने वाला इंसान नहीं कर पाता। कत्ल, डकैती, चोरी, जिनाकारी, जुल्म व ज्यादती और मारपीट जैसे जराइम की सबसे बड़ी वजह नशाखोरी है। तलाक के ज्यादातर वाकयात नशे की वजह से पेश आते हैं। सड़क हादसात और डूबने से होने वाली मौतों की भी सबसे बड़ी वजह नशाखोरी है। घरेलू झगड़ों और बीवियों बच्चों के साथ होने वाली मारपीट या जुल्म जबर दरअसल इसी नशाखोरी का नतीजा है। परिवार न्यायालय या खानदानी अदालतों और घरेलू पंचायतों का जायजा लें तो यहाँ पेश होने वाले 90% मुकदमात नशा करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से दर्ज होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क भारत में हर साल तकरीबन 20 लाख लोग नशे की ज्यादती की वजह से मौत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जबकि तकरीबन 2 लाख लोग नशे की ज्यादती की वजह से मौत का शिकार बन जाते हैं। भारत में ड्रग कारोबार लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। इनमें बड़ी तादाद नाबालिग बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों की भी है। ये बच्चे बड़े होकर कौन सा समाज बनाएंगे, ये सोचकर ही दिल कांपने लगता है। DAS.org की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के अमरीकियों में से 47.7 मिलियन लोग गैर कानूनी नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करते हुए पाए गए हैं। 12वीं क्लास तक पहुंचने वाले तकरीबन 36.8% तलबा नशे की लत का शिकार हो चुके हैं। मुंशियात के नुकसान का दूसरा पहलू माली है। नशा आवर अशिया आम तौर पर बहुत महंगी है। नशे की एक बोतल की कीमत आम तौर पर इतनी होती है कि एक गरीब रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला खानदान उस रुपये से 2 वक्त के खाने का इंतजाम कर सकता है। ये तो आम तौर पर मिलने वाली शराब की कीमत है। बाज ड्रग्स तो इतनी महंगी हैं कि उनकी कीमतें लाखों रुपये तक पहुँचती हैं। 5-10 ग्राम तक के ड्रग्स 10,000 से 15-20 हज़ार रुपये तक मिलती हैं। एक एक पुड़िया 2 से 3 हज़ार रुपये में दस्तियाब होती है। इस तरह के ड्रग्स के आदि वो नौजवान लड़के और लड़कियां होते हैं जो कॉलेजों में अभी पहुंचे हैं या अभी पास आउट होकर जॉब में आए हैं। उनकी आमदनी या जेब खर्च का ज्यादा हिस्सा इन ड्रग्स की नजर हो जाता है। अपनी आमदनी कम हो जाने की वजह से ये नौजवान चोरी, डकैती, फ्रॉड, हेराफेरी या दीगर जराइम की तरफ रुख कर लेते हैं। शादीशुदा अफराद घर परिवार और वालिदैन के खाने पीने, इलाज और दीगर जरूरियात को नजरअंदाज करके ज्यादातर रकम नशे पर खर्च करने लगते हैं। वालिदैन या बीवी से रकम न मिलने पर उनको जदो

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर 31,530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। गृहमंत्री ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
2: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े

0: अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्लेषण और गैर क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए कम मात्रा में सभी औषधियों के आयात की अनुमति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ये सरल प्रक्रिया यौन हार्मोन, साइटोटॉक्सिक और बीटा लैक्टेम संबंधी औषधियों पर प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने बताया कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति एसआईटी का गठन किया। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 176.1 मीटर 31530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा।

श्रोताओं, चलिए आपको बताते हैं कि हमारी आज की सभा में हम आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। अभी से कुछ ही देर बाद यानी कि 5:10 पर सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सूर्य संध्या। युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी, इसका प्रसारण समय रहेगा 5:30, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिया मिश्रा की वार्ता। विषय है नवाचार मंत्र पहल, माफ कीजिएगा, विषय है नशा।

शाम 6 बजे कार्यक्रम ग्राम्य लोक में आज सुनिएगा डॉक्टर भूमिराज सिंह से उनकी वार्ता हरी खाद की उपयोगिता।

कार्यक्रम मजदूर मंडल में आज सुनिएगा पद्मजा शर्मा की वार्ता, श्रमिकों के लिए कानूनी सुविधाएं। समय रहेगा 6:30।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर संध्या।

0: 14 अकबर फिल्म में आप सुन रहे थे A.R. रहमान की आवाज में और संगीत में जावेद अख्तर का लिखा गीत। श्रोताओं, दूसरा गीत हमने लिया है फिल्म पुकार से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं मजरूर सुल्तानपुरी और जावेद अख्तर, संगीतकार हैं A.R. रहमान।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोताओं, इसी के साथ सुर संध्या कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा और मैं आपकी रेडियो साथी राशि स्वागत करती हूं हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। साथियों कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और काम से फुर्सत लेकर अपनी फ्राइडे इवनिंग एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर हम हाजिर हो चुके हैं लेकर कुछ इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स और आपके फेवरेट सॉन्ग्स। साथियों आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे एक बेहद खास विषय पर चर्चा के साथ, जो है हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। साथियों अगर हम आपसे पूछें कि आपके लिए लाइफ का सबसे जरूरी हिस्सा क्या

तो शायद जवाब मिले हाई स्पीड इंटरनेट, एक अच्छा करियर और अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। लेकिन जरा सोचिए, क्या एक मजबूत और टिकाऊ इमारत बिना किसी मजबूत नींव के खड़ी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। साथियों, ठीक इसी तरह आज का भारत जिस डिजिटल और आर्थिक सुपर पावर बनने की राह पर है, उसकी नींव में देश की वो नीतियां और योजनाएं हैं जो हर नागरिक को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर दे रही हैं। तो चलिए साथियों, जानते हैं कि कैसे बुनियादी जरूरतों से लेकर डिजिटल गवर्नेंस तक ये पूरा इकोसिस्टम हमारे कल को रीशेप कर रहा है। साथियों, बुनियादी जरूरतों में पहले नंबर पर आता है जल। जल जीवन मिशन के तहत आज गाँव के घरों में नल से साफ पानी पहुंच रहा है, जिससे पानी भरने में लगने वाला समय और मेहनत बची है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान ने देश को स्वच्छता के प्रति एक नई सोच दी है। सौभाग्य योजना ने अंधेरे को दूर कर हर कोने को रोशन किया है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने माताओं बहनों को चूल्हे के धुएं से आजादी देकर एक स्वस्थ जीवन दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लाखों परिवारों का अपना पक्का घर होने का सपना सच हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गाँव को शहरों के बाजारों, कॉलेजों और अस्पतालों से जोड़कर हम युवाओं के लिए कनेक्टिविटी के नए रास्ते खोले हैं। साथियों, हेल्थ है तो वेल्थ है, यानी अच्छी सेहत भी एक बुनियादी जरूरत है। एक मजबूत देश के लिए नागरिकों का स्वस्थ और सुरक्षित होना सबसे महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर और फूड सिक्योरिटी के मोर्चे पर भारत ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है, जिसने गरीब परिवारों को महंगे इलाज की चिंता से मुक्ति दिलाई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के आने से अब आपको अपने पुराने पर्चे और मेडिकल रिपोर्ट्स संभाल कर रखने की जरूरत भी नहीं है। आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक डिजिटल हेल्थ आईडी में सुरक्षित रहती है। जननी सुरक्षा योजना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देकर माँ और बच्चे की जान सुरक्षित कर रही है। वहीं संकट के समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने ये सुनिश्चित किया है कि देश का कोई भी नागरिक भूखा न सोए। साथियों, आज के युवाओं, स्टूडेंट्स और उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स से जुड़ी है अगली बुनियादी जरूरत, जो है शिक्षा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने समाज की मानसिकता को काफी हद तक बदला है। समग्र शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा से जोड़ रहे हैं। साथियों, शिक्षा अब सिर्फ क्लासरूम्स तक सीमित नहीं है। स्वयं और दीक्षा जैसे पोर्टल्स ने डिजिटल पेडागोजी के जरिए देश के किसी भी कोने में बैठे छात्र के लिए देश के बेहतरीन प्रोफेसर से सीखने का रास्ता खोल दिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को आज के दौर की इंडस्ट्री के हिसाब से रेडी कर रही है। वहीं ग्रामीण इलाकों में लखपति दीदी पहल के जरिए महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर खुद के बिजनेस खड़ी कर रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। ग्रामीण रोजगार की रीढ़ कहे जाने वाली मनरेगा और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बना ई श्रम पोर्टल कामगारों को काम करने के लिए एक सिक्योर फ्रेमवर्क दे रहा है। पीएम जनधन योजना ने हर भारतीय का बैंक खाता खोलने का सपना सच किया है। पीएम मुद्रा योजना ने बिना गारंटी के लोन देकर छोटे स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है और यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया का ग्लोबल लीडर बना दिया है। इस पूरे डिजिटल रेवोल्यूशन को बैकएंड से सपोर्ट कर रहा है भारत नेट, जो देश की हर ग्राम पंचायत तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचा रहा है। विकास साथियों तब तक अधूरा है जब तक कि समाज का आखिरी व्यक्ति इसमें शामिल ना हो। पीएम जनमन मिशन विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शहरों जैसी बेहतरीन और मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए खोले जा रहे हैं, ताकि वो भी देश के बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपनी जगह बना सकें। वन धन विकास केंद्र आदिवासियों द्वारा जंगलों से इकट्ठा किए जाने वाले माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सही मार्केट और वैल्यू चेन से जोड़ रहे हैं, जिससे उनकी कला और उनकी मेहनत को सही कीमत मिल सके। तो साथियों, 100 बात की एक बात, आज का भारत सिर्फ योजनाएं नहीं बना रहा बल्कि

0: ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जहां एक आम नागरिक को रहने के लिए पक्का घर, पीने के लिए साफ पानी, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, पढ़ाई के लिए डिजिटल टूल्स और बिजनेस शुरू करने के लिए मुद्रा लोन एक साथ मिल सके। एक युवा के तौर पर ये बदलती हुई तस्वीर हमारे लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोलती है। साथियों, थोड़ा ध्यान से सोचें तो हमें रियलाइज होगा कि हमारे पास अनगिनत ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे हम भीड़ से अलग हटकर लाइफ में कुछ ऐसा करें कि एक मिसाल कायम हो, लेकिन कुछ लोग इन महत्वपूर्ण पलों को नशे की लत में गंवा बैठते हैं। साथियों, ये हम सब जानते हैं कि नशा नाश का कारण है। नशा चाहे किसी भी रूप में हो, ये व्यक्ति के विवेक, स्वास्थ्य और खुशियों को धीरे धीरे खा जाता है। ये सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलता बल्कि हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ देता है और समाज की जड़ों को खोखला कर देता है। साथियों, आज है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, जो हमें याद दिलाता है कि एक पल का भ्रमित करने वाला सुकून जीवन भर का दर्द बन सकता है। तो आइए इस विशेष दिवस पर नशे की लत से बचाव के संबंध में जानें वार्ताकार रिया मिश्रा से उनके विचार।
1: दोस्तों, हम युवाओं की असली पहचान महंगे कपड़ों से या स्टाइल से नहीं बल्कि हमारे सपनों से होती है, और नशा हमारे सपनों को बर्बाद करता है। तो नशा छोड़िए और सपने जोड़िए। आज की ये बात कोई उपदेश नहीं है बल्कि देश के युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की लत को लेकर चिंता है। दोस्तों, जब हम युवा शब्द सुनते हैं तो आंखों के सामने आती है असीमित ऊर्जा, बड़े बड़े सपने, कुछ कर गुजरने का जज्बा और एक ऐसी ताकत जो पहाड़ों को भी हिला दे। युवा होना दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है क्योंकि इस उम्र में हमारी आंखों में एक सुनहरा भविष्य तैर रहा होता है। लेकिन सोचिए, क्या हो जब इन उड़ान भरने वाले पंखों को नशे की दीमक उतरने लगे, जब सपने देखने वाली आंखों के आगे नशे की धुंध छा जाए। आपने कुछ बातें अक्सर सुनी होंगी, जैसे एक बार ट्राई करके देखते हैं, कूल दिखना है, या फिर लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, थोड़ा रिलैक्स होना है। दोस्तों, नशे की लत की शुरुआत ऐसे ही होती है। पीयर प्रेशर यानी दोस्तों का दबाव और सोशल मीडिया का दिखावा हमें उस रास्ते पर धकेल देता है जो शुरुआत में तो बड़ा रंगीन और सुहावना लगता है, लेकिन आगे जाकर एक गहरे अंधेरे कुएं में बदल जाता है। नशा चाहे सिगरेट का हो, शराब का हो या फिर ड्रग्स का, ये हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। ये सिर्फ एक छलावा है, एक भ्रम है। जो स्ट्रेस या दर्द हम भूलना चाहते हैं, नशा उसे खत्म नहीं करता बल्कि कुछ घंटों के लिए हमारे दिमाग को सुन्न कर देता है, और जब वह नशा उतरता है तो समस्या वहीं की वहीं खड़ी मिलती है बल्कि पहले से ज्यादा बड़ी दिखाई देती है, जिसे देखकर हमारा हौसला फिर से डगमगाने लगता है और हम फिर उसी पतन के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इस तरह हम एक भंवर में फंस जाते हैं। दोस्तों, सोचिए आपको जिंदगी में क्या बनना है। एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देश की सेवा करने वाला फौजी, एक शानदार कलाकार, बिजनेसमैन, या फिर एक ऐसा इंसान जो समाज में बदलाव ला सके। जब आप अपने दिल को इन खूबसूरत सपनों से भर लेते हैं तो नशे जैसी फालतू और खोखली चीजों के लिए आपके दिमाग में कोई जगह ही नहीं बचती। सपने वो हैं जो आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दें। सपने वो हैं जो आपको हारने के बाद भी दोबारा खड़े होने की हिम्मत दें। के सपने आपके वर्तमान को अनुशासित करते हैं और भविष्य को सुनहरा बनाते हैं। नशे की लत आपके वर्तमान को तो धुंधला करती ही है, साथ ही आपके सुनहरे भविष्य को भी तबाह कर देती है। अब फैसला आपका है कि क्या आप नशे की लत के अंधकार में जीना चाहते हैं या अपने सपनों को सुनहरी धूप में खिलते देखना चाहते हैं। दोस्तों, जब हम नशे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ शराब, सिगरेट या ड्रग्स की तस्वीर आती है, लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में युवाओं को एक और नए तरीके का नशा अपनी गिरफ्त में ले रहा है, और वो है स्क्रीन और सोशल मीडिया का नशा। सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक हमारे हाथ में स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स ही दिखते हैं। रील्स और शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते करते कब घंटों बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। मिनट मिनट में नोटिफिकेशन चेक करना, लाइक्स और कमेंट्स की गिनती करना, जानते हैं इसका क्या असर होता है? ये हमारे दिमाग में डोपामिन नाम के केमिकल को रिलीज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई ड्रग्स करता है। इस डिजिटल नशे का नुकसान ये होता है कि ये हमारी असली सपनों को हमसे दूर कर रहा है। हम दूसरों की रील्स में उनकी परफेक्ट लाइफ देखकर डिप्रेशन में जा रहे हैं, जबकि असलियत में हम अपनी खुद की लाइफ को बर्बाद कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका नशा मत कीजिए। याद रखिए, स्क्रीन पर दिखने वाली दुनिया वर्चुअल

वर्चुअल है आपकी असली दुनिया और आपके असली सपने स्क्रीन के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए एक पल के लिए उनके बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपना रोल मॉडल या हीरो मानते हैं। क्या ये लोग दिन भर सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरों की लाइफ देख रहे थे या क्या इन्होंने नशे के सहारे अपनी पहचान बनाई? बिल्कुल नहीं, ये आज जहाँ भी हैं अपनी कड़ी मेहनत, डिसिप्लिन और अपने सपनों के प्रति डेडिकेशन और डिवोशन की वजह से हैं। जब आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं, जब आपको अपनी मंजिल दिखने लगती है, तो आपको किसी और नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। असली खुशी तब महसूस होती है जब आप अपनी जिंदगी का पहला बड़ा गोल अचीव करते हैं या जब आपके माता पिता आपकी कामयाबी पर गर्व करते हैं। दोस्तों, कोई भी बदलाव बड़ा या छोटा रातों रात नहीं आता, एक दिन में खुद

0: बड़ा या छोटा रातों रात नहीं आता। एक दिन में खुद के अंदर बदलाव लाना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकती है, लेकिन शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है और शुरुआत हमेशा आज से, अभी से, बल्कि इसी क्षण से होनी चाहिए। अगर आपको सिगरेट की लत है तो आज एक सिगरेट कम कीजिए। आज अगर स्क्रीन टाइम 5 घंटे है तो उसे 4 घंटे कीजिए और उस बचे हुए 1 घंटे में वो काम कीजिए जो आपको आपके सपने के करीब ले जाता है। कोई किताब पढ़िए, कोई नई स्किल सीखिए या मैदान में जाकर पसीना बहाइए। अगर जाने अनजाने कोई इस चक्रव्यूह में फंस गया है तो याद रखिए, बाहर निकलने का रास्ता हमेशा होता है। हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स देख पाएंगे। जिसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि आप ना कहना सीखें। अगर आपका कोई दोस्त आपको नशे की ओर ले जाने की कोशिश भी करता है तो बिना झिझक मजबूती से उसे ना कहिए। जो दोस्त आपकी भलाई नहीं चाहता वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। दूसरी जरूरी बात ये कि नशे की तलब तब ज्यादा होती है जब आप खाली या बोर होते हैं। अपनी ऊर्जा को स्पोर्ट्स, जिम, डांस, म्यूजिक या किसी हॉबी में लगाइए। जब शरीर से पसीना बहेगा तो एंडोर्फिन्स यानी हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे जो आपको बिना किसी नशे के भी खुश रखेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी मानसिक तनाव, डिप्रेशन या अकेलेपन से गुजर रहे हैं तो अपने माता पिता, भाई बहन, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। अपनी बात को अंदर दबा कर ना रखें, ना ही अपने इमोशंस को नजरअंदाज करें। सभी अभिभावकों और दोस्तों से भी हमारा यही निवेदन है कि अगर आपके आसपास कोई युवा इस रास्ते पर भटक गया है तो उसे दुत्कारिए मत, उसे अपराधी मत समझिए। नशा एक बीमारी है और उस युवा को इस समय आपके तानों की नहीं, आपके साथ और सहारे की जरूरत है। उसे डांटने के बजाय उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश कीजिए और उसे फिर से सपने देखना सिखाइए। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। क्या आप जानते हैं कि हर साल 26 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस यानी इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे मनाती है। इस दिन को मनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरी दुनिया को ये याद दिलाना कि नशा हमारे समाज को खोखला कर रहा है और हमें मिलकर इससे लड़ना है। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और ये सिर्फ एक बार मिलती है। इसे किसी केमिकल, किसी धुएं या किसी बोतल के हवाले मत कीजिए। आपके माता पिता ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। उनकी उम्मीदों को और सबसे बढ़कर खुद के वजूद को इस तरह बर्बाद मत होने दीजिए। उठिए, आगे बढ़िए, इतिहास रचिए, क्योंकि ये उम्र थमने की नहीं, आसमान छूने की है।
1: तरक्की की राह पर बढ़ते हमारे युवा साथियों, हमें नशे के जाल से बचना बेहद जरूरी है। आइए मिलकर ये संकल्प लें कि न केवल खुद नशे से दूर रहेंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे, क्योंकि एक नशा मुक्त समाज ही उज्जवल और सशक्त भविष्य की नींव रख सकता है। साथियों, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था नशा छोड़िए, सपने जोड़िए। वार्ताकार थी रिया मिश्रा। कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: साथियों, हम युवाओं की सुपर पावर है हमारा क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड। अक्सर हम युवाओं के पास कई शानदार आइडियाज होते हैं, लेकिन सही गाइडेंस, फंड या प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण वो आइडियाज दम तोड़ देते हैं। लेकिन एक पहल इस गैप को भरने का काम करती है जिसका नाम है नवाचार मंत्र। साथियों, नवाचार मंत्र का मुख्य उद्देश्य देश के स्टूडेंट्स और युवाओं में क्रिएटिव थिंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को जगाना है। ये पहल युवाओं को किताबी ज्ञान से बाहर निकालकर प्रैक्टिकल लर्निंग और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो समाज की किसी भी समस्या को हल कर सकता है तो नवाचार मंत्र पहल खास आपके लिए ही बनी है। इस पहल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक आम छात्र भी अपने आइडिया को एक सफल बिजनेस मॉडल में बदल सकता है। देश के कोने कोने में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं ताकि युवाओं

नवाचार की ताकत का एहसास कराया जा सके। इस पहल के तहत देश के बड़े बड़े उद्योगों के एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक और सफल स्टार्टअप फाउंडर्स युवाओं के मेंटोर्स बन रहे हैं। वो युवाओं को सिखाते हैं कि अपने आइडियाज पर काम कैसे करना है। साथियों, युवाओं को अपने आइडिया का प्रोटोटाइप या मॉडल बनाने के लिए अत्याधुनिक लैब्स और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इनमें से जो आइडियाज यूनिक होते हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शुरुआती फंडिंग और सरकारी और निजी इनक्यूबेशन सेंटर से जोड़ा जाता है। तो नवाचार मंत्र पहल का लाभ उठाने के लिए आप समाज, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा या पर्यावरण से जुड़ी किसी समस्या को देखें और सोचें कि इसे किसी तकनीक या किसी नए तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। इस पहल से जुड़े आधिकारिक सरकारी पोर्टल्स या कॉलेज के इनोवेशन सेल के माध्यम से खुद को रजिस्टर करें और समय समय पर आयोजित होने वाले हैकाथॉन्स और आइडिया कॉम्पिटिशन्स में अपने विचार सबमिट करें। साथियों, आज हम सिर्फ नौकरी पाने की दौड़ में शामिल होना नहीं चाहते, बल्कि खुद नौकरी पैदा करने वाले यानी एक जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। इस नए भारत की नई सोच को एक मजबूत फाउंडेशन देने के लिए नवाचार मंत्र पहल की शुरुआत की गई है। ये सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि देश के युवाओं की इनोवेशन को हकीकत में बदलने का एक जरिया है। तो आप भी अपने अंदर छिपे इनोवेटर को जगाइए, नवाचार मंत्र से जुड़िए और बदल दीजिए दुनिया, क्योंकि आपका एक छोटा सा आइडिया कल का बड़ा बदलाव बन सकता है। कामयाबी के खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए खोलिए अपने पर और हमारे साथ एंजॉय कीजिए फिल्म हिचकी से ये प्यारा सा गाना।

साथियों, आप आज जो बड़ी बड़ी इमारतें, मजबूत पुल और धातु की मशीनें देखते हैं, उन्हें बनाने के पीछे कई कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक तकनीक काम करती हैं। इन्हीं में से एक है इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल टेक्निक, जिसे कहते हैं

प्रोसेसिंग, चाहे घर बनाने में इस्तेमाल होने वाला सीमेंट हो या गैजेट्स में लगने वाले मेटल्स, इंडस्ट्रियल लेवल पर इन्हें तैयार करने में इस थर्मल प्रक्रिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए समझते हैं कि पायरो प्रोसेसिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। साथियों, पायरो प्रोसेसिंग वो साइंटिफिक टेक्निक है जो बहुत ऊंचे तापमान का इस्तेमाल करके कचरे में से कीमती धातुओं को निकालने का काम करती है। देखिए, पायरो का मतलब होता है आग या बहुत तेज गर्मी और प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रक्रिया। पायरो प्रोसेसिंग एक ऐसी थर्मल तकनीक है जिसमें किसी भी ठोस पदार्थ को आमतौर पर 800 से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें फिजिकल और केमिकल बदलाव लाए जा सकें। सरल शब्दों में कहें तो ये मेटल्स और मिनरल्स को आग की भट्टी में तपाकर शुद्ध और उपयोगी बनाने का विज्ञान है। सीमेंट बनाने से लेकर लोहे और सोने जैसी धातुओं को उनके ओर से अलग करने तक हर जगह इसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। पायरो प्रोसेसिंग में तापमान और जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कैल्सिनेशन। इसमें लाइमस्टोन को गर्म करके सीमेंट के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है। रोस्टिंग में ऑक्सीजन की मौजूदगी में मेटल्स की ओर्स को गर्म किया जाता है जिससे अशुद्धियां निकल जाती हैं। इसके अलावा स्मेल्टिंग में धातु पूरी तरह पिघल जाती है। इसी प्रक्रिया से कच्चे लोहे या तांबे को शुद्ध रूप में निकाला जाता है। साथियों, आपके पुराने फोन और लैपटॉप के मदरबोर्ड में चांदी, तांबा और पैलेडियम जैसी कीमती धातुएं होती हैं। आज के आधुनिक पायरो प्रोसेसिंग तकनीक इन खराब इलेक्ट्रॉनिक्स को पिघलाकर उनमें से 99% शुद्ध धातुएं वापस निकालकर देती हैं। इसे हम लोग अर्बन माइनिंग भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर साइंस में इस्तेमाल हो चुके ईंधन को दोबारा रिसाइकल करने के लिए भी पायरो प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। इससे परमाणु कचरा बहुत कम हो जाता है और बची हुई ऊर्जा का दोबारा इस्तेमाल हो पाता है। क्योंकि दुनिया अब रिसाइकल और रीयूज के प्रिंसिपल पर चल रही है, इसलिए पायरो प्रोसेसिंग हर इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। तो साथियों, अगर आप इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस या मेटलर्जी में रुचि रखते हैं तो पायरो प्रोसेसिंग आपके लिए काफ़ी अच्छा करियर विकल्प साबित हो सकती है। इसी के साथ पायरो प्रोसेसिंग संबंधित जानकारी यहीं समाप्त करते हैं और लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

साथियों, इसी गीत के साथ समय हो चला है कार्यक्रम संपन्न करने का। आपसे फिर जल्द ही करेंगे मुलाकात। आप सुन रहे थे अपनी रेडियो साथी राशि को। अब हमें दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम जिसका नाम है ग्राम्य लोक।

0: राम राम किसान भाइयों बहनों। अच्छा और सुनाइए, कैसे हैं आप सब? आपकी खेती किसानी और आपके पशु? वैसे अगर हम अपनी यानी आपका ये साथी देवेंद्र अपनी बात करें तो इस समय हमारे तो सारे कामकाज एकदम चकाचक चल रहे हैं। हम भी बढ़िया, हमारी खेती किसानी भी बढ़िया चल रही है। हाँ, अगर हम अपने पशुओं की बात करें तो कुछ काम अभी ज़रूर बकाया है। वैसे तो आवास, हरे चारे, दाना, दलिया, भूसा सब चीज़ों की व्यवस्था है, पर जो सबसे ज़रूरी काम है उसमें अब की बात थोड़ी सी चूक हो गई है। अरे भैया, अब आपसे क्या छिपाना, अब की बार 3 महीने से ज़्यादा हो गए पशुओं को पेट के कीड़ों की दवा नहीं खिलाई, और 2 अदवैसे पशु हैं जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया। बस भैया इसी काम में थोड़े पीछे हो गए हैं, नहीं तो सारे काम सही समय पर हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो जाता है। अरे नहीं भैया, इस थोड़े बहुत के चक्कर में कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाता है, क्योंकि जानते हैं पशुओं के लिए भी टीकाकरण उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि हम आपके लिए। और देखिए, पशुओं में टीकाकरण का क्या महत्व होता है, इस बात को और अधिक बेहतर तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए हमने रुख किया एक पशु चिकित्सालय का, और वहाँ हमारी मुलाकात हुई वहाँ के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर दिलीप कुमार से।
1: किसान साथियों, देखिए हम लोग लगातार पशुपालन करते आ रहे, लेकिन अभी भी हम लोग उसी देसी धरने

0: पर कर रहे हैं, मतलब देसी तरीके से कर रहे हैं। अब हमें अगर उनसे अधिक उत्पादन लेना है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो हमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। और वो बदलाव कैसे करने हैं, हमें क्या करना है उसके लिए, इन बारीकियों को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं पशु चिकित्सालय में। और हमारे बीच है वहाँ के जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, श्री दिलीप कुमार जी। तो सर, हम आपसे जानेंगे कि पशुपालन करते समय हमें किन बातों का सबसे अधिक ध्यान रखना है।
1: धन्यवाद। सबसे ज्यादा जरूरी तो आजकल अगर आप पशुपालन कर रहे हैं, चाहे आप गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी का भी आप अगर पशुपालन कर रहे हैं, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट उनको स्वस्थ रखने का तरीका है कि आप उनका जो एक तो डिवर्मिंग मतलब कीड़े की दवा देना प्रॉपर हर 3 महीने में। दूसरा, जो भी हमारे यहाँ टीकाकरण होता है, चाहे वो खुरपका मुंहपका का हो
0: जी,
1: गाय भैंसों में, या
0: जी
1: गला घोटू का हो, या बकरियों में पीपीआर का हो।
0: पीपीआर क्या होता है सर?
1: पीपीआर
0: अगर
1: एक तो
0: साधारण से
1: वायरस रोग होता है जिसमें बकरियों को जो है उनका मुंह पक जाता है, उनके बकरियों पे मुंह पे छाले पड़ जाते हैं,
0: जी
1: और वो टेम्परेचर उसमें जो है बकरियों का 105 से 107 तक पहुंच जाता है।
0: बुखार रहता है
1: बुखार
0: मतलब।
1: बहुत ज्यादा रहता है और दस्त भी होने लगते हैं, और कभी कभी इसमें बकरियां बहुत ज्यादा मोर्टिलिटी यानी मर जाती हैं। तो
0: अच्छा,
1: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि आप लोग अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो उनको पीपीआर का टीका जरूर लगवा दें। 3 महीने का अगर बच्चा है, उसके बाद 3 महीने के बाद एक बार टीका लगवा दें, और फिर 3 साल तक उसको लगाने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद लगवाते रहिए। पीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगता है कि अगर पीपीआर आपके बकरियों में हो रहा है तो उस बकरी को उस झुंड से जरूर अलग कर दें, उसका खाना पीना रहना अलग कर दें, उस कमरे की सफाई कर दें, और उसका ट्रीटमेंट कराएं। जब वो बकरी ठीक हो जाए तो उसका उसको एक साथ रखने तो दिक्कत नहीं
0: अच्छा,
1: होगी।
0: लक्षण आपने बताया कि मुंह में फफोले टाइप के, जैसे
1: जी
0: फुंसी टाइप की, वो पीपीआर के लक्षण हो गए।
1: जी
0: अच्छा, लक्षण के पहले वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: ये पशु चिकित्सालय द्वारा किया जाता है कि किसान को खुद अपने
1: नहीं
0: निजी?
1: नहीं बिल्कुल, हम जो है साल में हमारा जो एक बार पीपीआर का टीका लगता है, और हम लोग हर गांव में हमारी टीम जाती है और वो टीका
0: बकरियों को
1: लगाती है
0: लगाने के
1: बकरियों
0: लिए?
1: को। आप जो है अगर मान लिया सपोज कि अगर छूट गया कहीं पे, तो हमारे पशु चिकित्सालय चले जाइए निकट जो है,
0: जी,
1: और वहां पे डॉक्टर से हमारे जो भी कर्मचारी उसे कहेंगे तो आपके बकरियों को टीका वो लगा देंगे।
0: तो बकरियों को वहां ले जाने की जरूरत पड़ती है कि वो खुद स्वतः हमारे गांव में आकर लगाएंगे
1: नहीं,
0: उसको?
1: हमारी टीम तो हर गांव में, क्योंकि
0: लगाएंगे
1: हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, हर ब्लॉक लेवल पे शेड्यूल बनता है कि आज किस किस गांव में टीका लगाना है, और हमारे कर्मचारी, हमारे पैरावेट्स वहां जाते हैं, टीकाकरण करते हैं।
0: अच्छा
1: अगर बाई चांस अगर छूट जाता है, आपकी कोई बकरी छूट जाती है, तो
0: जी।
1: आप अस्पताल ला के भी लगवा सकते हैं, या आप बुला के किसी को लगवा सकते
0: अच्छा, इसके लिए कोई शुल्क देने की जरूरत है
1: हैं। नहीं, कोई
0: तो
1: शुल्क
0: अच्छा
1: नहीं है।
0: अच्छा ये पीपीआर मतलब कब लगता है, कब कुछ अनुमानित समय बता सकते हैं?
1: जनरली ये जो है बरसात से पहले लगवा देते हैं हम लोग, क्योंकि बरसात में
0: मतलब
1: ज्यादा।
0: जून या जुलाई? जून, जून मई जून में,
1: हाँ,
0: मई जून में अभी तो लग
1: जुलाई
0: रहे
1: तक
0: होंगे इस समय।
1: अभी तो इस समय तो नहीं आए हैं, कुछ दिन पहले लग चुके हैं इसके टीके,
0: अच्छा
1: तो हो सकता है हम लोग अब सितंबर दिसंबर में इसको शुरू करें।
0: चलिए सर, ये तो बात हुई हमारी बकरियों की। अब अगर बड़े पशुओं की बात की जाए, जैसे हमारे गाय है, भैंस है, तो इनके लिए कौन कौन से
1: जी,
0: टीके लगवाने बहुत जरूरी हैं?
1: बड़े पशुओं में सबसे ज्यादा इस समय जो पूरे प्रदेश लेवल पे अगर ज्यादा एक घातक बीमारी है, वो है खुरपका मुंहपका। क्योंकि इसमें क्या होता है कि गांव में अगर कोई भी गोवंश या महेश वंश, कोई भी गाय भैंस अफेक्टेड होती है, तो जनरली पूरे गांव को अफेक्ट कर देती है।
0: जी,
1: तो हम लोग इसको जो है हर साल 2 बार टीकाकरण कराते हैं, एक होली के पहले और एक दिवाली के पहले, मतलब ये एक
0: मतलब
1: रोटेशनल चलता रहता है।
0: मार्च और अक्टूबर के
1: हाँ,
0: महीने
1: इस महीने में हम लोग टीकाकरण कराते हैं और लगातार हर मतलब करवाते ही आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो किसान भाई कुछ ऐसे होते हैं जो टीकाकरण नहीं करवाते हैं, उनकी गाय भैंस जब उनको दिक्कत हो जाती है, परेशान
0: संक्रमित हो
1: होते हैं,
0: जाती
1: संक्रमित
0: है।
1: हो जाती है, वो परेशान होते हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं लगवाते कि दूध कम हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं भाई अगले लीटर दूध, एक दो 2-4 दिन कम हो जाएगा, कोई दिक्कत फिर बढ़ जाएगा।
0: मतलब रेगुलर करना
1: हाँ,
0: होगा,
1: रेगुलर
0: मतलब
1: कम
0: कुछ
1: नहीं है,
0: समय के लिए 1-2 दिन के लिए
1: बिल्कुल
0: इफेक्ट
1: फिर
0: फर्क पड़ सकता
1: बढ़
0: है।
1: जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
0: अच्छा सर, गाभिन पशुओं को लेके लोगों के अंदर भ्रम रहता है, कि जो किसान भाई है उनके अंदर, कि गाभिन पशुओं को टीकाकरण करवाना चाहिए कि नहीं करवाना
1: नहीं,
0: चाहिए?
1: हमारे जो गाभिन पशुएं हैं उनको अगर वो 6 महीने तक की गाभिन है तो कोई दिक्कत नहीं, टीकाकरण हो सकता है। 6 महीने के बाद वाले को हम लोग टीकाकरण नहीं करते, उसे अबॉर्शन का खतरा रहता है, तो हम लोग बता देते हैं। अगर हमें किसान बता दे कि हमारी गाय या भैंस जो भी प्रेग्नेंट है, तो हम लोग उस हिसाब से अपना टीकाकरण करते थे।
0: अच्छा सर, टीकाकरण के बाद बताते हैं फीवर आता है, बुखार आने के
1: हाँ, आ
0: चांस
1: जाता
0: रहते
1: है, आ
0: हैं?
1: जाता है, कभी ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है, कोई जरूरी नहीं है।
0: अच्छा, आपने खुरपका मुंहपका बताया। अभी सर हमारे यहाँ पे लंपी बीमारी बहुत चली है, मरे भी हैं बहुत से पशुओं की मौत भी हो गई है, तो उसके लिए टीकाकरण करवाना अनिवार्य है, जरूरी है, क्या है वो?
1: हाँ, लंपी चूंकि अभी हमारे यहाँ 2-3 साल पहले आई थी, एक बार पूरे प्रदेश में हुआ हुआ था, तो उसके बाद
0: जी,
1: हम लोगों ने जो है उसका टीकाकरण कराया था और अब हर साल प्रत्येक वर्ष हम लोग एक बार लंपी का टीकाकरण करवा रहे हैं।
0: अच्छा, ये कब किस समय पे करवा रहे हैं?
1: ये अभी लंपी का टीकाकरण हमारा हो चुका है, ठंडियों में

0: सर भाई नवंबर दिसंबर हम लोगों ने करवाया था,
1: अब
0: अब ये फिर नेक्स्ट मतलब
1: उसी में होगा।
0: सर्दियों में ही होगा सर, मतलब इसका टीकाकरण सर्दियों में होता है। अगर कोई जैसे गांव छूट रहा हो या किसी को जानकारी ना हो तो अपने पशु चिकित्सालय में जाकर वहां से संपर्क कर सकते हैं। सर टीकाकरण के अलावा खान पान और बाड़ा होता है, आवास होता है, उसके बारे में और थोड़ा बता दीजिए हमारे किसान भाई।
1: देखिए आवास सबसे मेन जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है हमारे गौशाला से होती है। अगर आप पशुओं को जहाँ रख रहे हैं जिस गौशाले में, उसके आप साफ सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, तो उसमें भी बहुत संक्रामक बीमारी होती है। जैसे अभी आपको बताऊं मैं, एक बीमारी है थनेला।
0: जी हाँ जी हाँ
1: थनेला का मेन कारण है कि साफ सफाई करना होगा,
0: जी
1: क्योंकि हमारे जो पशुपालक है वो क्या करते हैं कि वहीं पे वो गाय गोबर करती है, पेशाब भी करती है, उसको साफ नहीं करते हैं, फिर वहीं पे
0: जी
1: वो दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद वो छोड़ देते हैं, वो वहीं बैठ जाती है और
0: जी
1: उसका पोर जो थन का होता है वो खुला रहता है, और वहां से बैक्टीरिया और जो भी
0: जी
1: चीजें होती है एंटर कर जाती है और वो जो है इन्फेक्शन क्रिएट करती है। तो थनेला को अगर आप साफ सफाई रखते हैं अपने गौशाला में, अगर आपने गाय भैंस को दूध निकालने के कम आधे घंटे तक खड़ा रखते हैं, तो इस बीमारी से बहुत सारी बचा जा सकता है।
0: तो खड़ा रखने के लिए सर उन्हें
1: चारा दे दीजिए, आप चारा रख दीजिए सामने, वो खड़ी रहेंगी, चारा खाएंगी, तो फिर आधे घंटे
0: दाना
1: पोर बंद हो जाएगा। 15 से 20 मिनट पोर बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी आधे घंटे अगर वो हटता जनरली वो बंद हो जाएगा।
0: ऐसा, अगर हम लोग सानी जो चारा खिलाते हैं पहले दूध निकाल रहे हैं उसके बाद चारा डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं रहेगा वो?
1: इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप चारा बाद में देंगे तो ठीक रहेगा, कि दूध निकाल लेंगे फिर
0: हाँ
1: भूखी होगी तो खा लेगी, और नहीं तो तुरंत बैठ जाएगी चारा खाने के बाद, तो फिर वो समस्या
0: अच्छा,
1: हुई।
0: ये तो सर चारा प्रबंधन की बात हुई, आवास के लिए आपने बताया कि, तो आवास को हम लोग कैसे मतलब रोग मुक्त या कहें कीटाणु मुक्त विषाणु मुक्त रख सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए क्या?
1: देखिए आप जहां भी आप अपने गाय भैंस को रखते हैं जो गौशाला में, डेली उसकी साफ सफाई करिए, हफ्ते में एक बार फिनाइल से सफाई करिए, जहां से एंट्री पॉइंट हो वहां पे चूना डाल दीजिए, जिससे भी कोई बाहर का जो है कोई भी रोग कोई भी पैर के थ्रू उनके थ्रू ना आ पाए, तो उससे बहुत सारी बीमारी से बचा जा सकता है।
0: अच्छा, कोई और कोई संदेश देना चाहें आप अगर हमारे किसान भाइयों को जो आपको सुन रहे हैं?
1: हम तो इतना कहना चाहते हैं किसान भाइयों की कि आप जो है पशुपालन एक व्यवसाय बन चुका है और हम उससे बहुत अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं, तो हमें वैज्ञानिक तरीके से ही पशुपालन को अब करना चाहिए, जिसमें मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, उनका ब्रीडिंग अच्छी होनी चाहिए और फीडिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अगर इन तीन चीजों पर ध्यान देते हैं, फीडिंग ब्रीडिंग और मैनेजमेंट, तो आप वाकई बहुत अच्छा कर सकते हैं और इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
0: सर आपने इतनी उपयोगी हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और
2: साथियों, अभी डॉक्टर दिलीप कुमार जी ने बड़ी ही उपयोगी जानकारियाँ दी, उम्मीद है हम उनके द्वारा बताई गई बातों पर अमल करेंगे और पशुओं के टीकाकरण के महत्व को समझते हुए उनका टीकाकरण ज़रूर करवाएंगे। तो ये तो बात हुई हमारे काम की, आइए अब एक और काम की बात कर ली जाए। जी हाँ, हमारे मनोरंजन की। तो आइए हमारे साथ आप भी आनंद लीजिए इस लोकगीत का।

साथियों, अभी कुछ ही दिनों में धान की रुपाई और बुआई शुरू हो जाएगी। हालांकि हमारे कुछ किसान भाइयों ने धान की सीधी सीधी बुआई कर भी दी होगी या करने वाले होंगे। उसके बाद बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर, कहने का मतलब है कि अब ये सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहेगा। पर जानते हैं, इस बार खेत के रकबे के हिसाब से ही खाद मिलेगी, इसलिए मारामारी खाद की नहीं रहेगी। वैसे साथियों, एक बात तो कहेंगे कि अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से हानि के अलावा मिलता कुछ नहीं है, इसलिए जितना हो सके उतना गोबर की खाद, जैविक खाद और हरी खाद का उपयोग करें। वैसे आपको बता दें कि आज अपने कार्यक्रम में हरी खाद की उपयोगिता के विषय में डॉक्टर भूमिराज सिंह बहुत ही उपयोगी जानकारी देने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा।

किसान भाइयों, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु परिणाम उतने उत्साहजनक नहीं प्राप्त हो रहे हैं जितनी की आशा की जा रही थी। अगर हम कारणों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति में निरंतर गिरावट आ रही है, जिसका प्रमुख कारण मृदा में घटता हुआ जैविक कार्बन अंश है। इस कमी को दूर करने के लिए हमें गोबर की खाद अथवा हरी खाद आदि के प्रयोग पर विशेष जोर देना होगा। परंतु किसान भाइयों के पास घटती पशु संख्या के कारण तथा उपलब्ध गोबर के अधिकांश भाग का ईंधन के रूप में प्रयोग होने से गोबर की खाद की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जिस कारण हमें दूसरे विकल्प अर्थात हरी खाद का कृषि में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, जिससे न केवल मृदा में भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में सुधार होगा, बल्कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता भी आसानी से हो जाएगी। हरी खाद की कृषि में उपयोगिता विरजिल नाम के व्यक्ति ने ईसा पूर्व ही यह सिद्ध कर साबित कर दी थी कि दाल वाली फसलों के द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। हरी खाद से हमारा आशय मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने व भौतिक अवस्था में सुधार लाने के लिए हरी वानस्पतिक सामग्री जैसे कि उपयुक्त फसल उसी खेत में उगाकर उसके वानस्पतिक भागों को खेत में ही मिलाकर उसके गलन सड़न की प्रक्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। हरी खाद के प्रयोग से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। हरी खाद के प्रयोग से भूमि के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में सुधार होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। इस खाद के प्रयोग से भूमि की पानी एकत्रित करने की क्षमता में सुधार होता है, जिस कारण वर्षा पर आधारित फसलों की पैदावार पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। हरी खाद का कृषि में प्रयोग करने से मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में आशातीत वृद्धि होती है। इस खाद के प्रयोग से भूमि में वायु संचार में सुधार के साथ ही साथ लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में भी आशातीत वृद्धि होती है। हरी खाद के प्रयोग से रासायनिक खादों पर होने वाले खर्चे को कम करते हुए कृषि लागत को घटाया जा सकता है। इस खाद के प्रयोग से भूमि के पीएच मान में कमी आती है, जिस कारण मृदा की क्षारीयता में सुधार होता है। हरी खाद के सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि पानी के साथ क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है। अतः अम्लीय माध्यम से मिट्टी में फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है, वे कौन कौन सी फसलें हैं जिन्हें हम हरी खाद बनाने हेतु प्रयोग में ला सकते हैं। फसल का चुनाव करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फसल तेजी से बढ़ने वाली तथा उसकी पत्तियां, शाखाएं व तना सामान्यतः मुलायम व नर्म होनी चाहिए, जिससे कि भूमि में दबाने पर वह सड़ गल सकें। पौधों में शाखाएं व पत्तियां अधिक से अधिक हों, फसल की जल व पोषण तत्व संबंधी मांग कम से कम हो, फसल की जड़ें गहराई तक जाने वाली होनी चाहिए ताकि वह गहराई से पोषक तत्व प्राप्त कर उसे ऊपरी मृदा में छोड़ दें। फसल फलीदार होनी चाहिए ताकि उस फसल के द्वारा भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अधिकाधिक स्थिरीकरण हो सके। फसल इस प्रकार की होनी चाहिए जो जलवायु की विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि अधिक या कम ताप, कम या अधिक वर्षा आदि को सहन करने की क्षमता रखती हो। अगर उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम देखें तो ढेंचा, सनई, मूंग, उड़द, लोबिया व ग्वार आदि प्रमुख फसलों के साथ ही साथ बरसीम व मटर को भी हरी खाद हेतु उगाया जा सकता है। हरी खाद हेतु ढेंचा सर्वाधिक रूप से उगाया जाता है। यह सभी प्रकार की मृदाओं में आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी बुवाई जुलाई तक की जा सकती है। हमें हरी खाद की बुवाई करते समय इस बात का

0: ध्यान रखना चाहिए कि उस खेत में अग्रिम फसल कब बोनी है। ढैंचा की प्रमुख फसल को 30, 40 या 60 दिन की अवस्था पर खेत में मिलाया जा सकता है, जिससे हमें क्रमशः 30, 70 व 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति एकड़ प्राप्त होती है। ढैंचा की बुवाई हेतु एक या दो जुताई उपरांत 15 या 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ढैंचा के बीजों को एक दिन पूर्व पानी में भिगोकर छिड़काव विधि से बो सकते हैं। प्रथम सिंचाई एक सप्ताह बाद करनी चाहिए। यदि वर्षा न हो तो 60 दिनों की फसल हेतु 4 या 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। वैसे तो 30 दिनों की फसल को भी हरी खाद हेतु प्रयोग किया जा सकता है, परंतु सबसे अच्छी हरी खाद उस वक्त प्राप्त होती है जब फसल में फूल आने की शुरुआत हो। प्राय यह अवस्था इस फसल में 60 दिनों पर होती है। इस अवस्था पर इस फसल को मिट्टी पलटने वाले हल अथवा ट्रैक्टर चले डिस्क हैरो से 15 से 25 सेंटीमीटर की गहराई तक मिट्टी में दबाया जाना चाहिए। उसके उपरांत खेत में पानी देने से फसल की गलन सड़न की क्रिया तीव्र हो जाएगी और खाद अच्छी बनेगी। हरी खाद हेतु सनई की फसल को भी प्रमुख रूप से उगाया जाता है। यह फसल भी बहुत तेजी से बढ़ती है तथा 10 से 12 सप्ताह में 4 से 5 फुट ऊंची हो जाती है। इसको भी जुलाई तक बोया जा सकता है, जिसके लिए 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज की आवश्यकता होती है। सनई की 60 दिन की फसल से हमें 80 कुंतल प्रति एकड़ हरी खाद प्राप्त हो जाती है। हरी खाद हेतु मूंग, उड़द, लोबिया तथा ग्वार की फलियों को तोड़ने के बाद अथवा 55 से 60 दिन की अवस्था पर मृदा में मिलाया जा सकता है। इस प्रकार ग्वार व लोबिया की फसल से 50 से 80 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से हरी खाद प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरी खाद कृषि के लिए काफी उपयोगी है। यह न केवल मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाते हुए मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में सुधार करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाती है।
1: हरी खाद की उपयोगिता। अभी इस विषय में बड़ी ही काम की जानकारी दे रहे थे डॉक्टर भूमिराज सिंह। उम्मीद है हम आप हरी खाद की उपयोगिता को समझते हुए अपने खेत में अधिक से अधिक इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। तो दोस्तों, आज अपने आगरा शहर के तापमान की अगर बात की जाए तो बीते हुए 24 घंटों में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस। और आगामी 24 घंटों के बारे में संभावना है कि अधिकतम तापमान रहेगा 41 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस बने रहने की उम्मीद है। यानी कि कल की अपेक्षा, यानी कि बीते हुए 24 घंटों की जो बात की जाए उसकी अपेक्षा आने वाले समय में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अपना ध्यान रखिएगा और जो भी ज़रूरी एहतियाती उपाय हैं उन पर अमल कीजिएगा। और कुछ उपाय हमारे भैया जो हैं वो अपने भौजैया को बता रहे हैं, यानी कि अपनी भाभी को बता रहे हैं, उन्हें भी ध्यान से सुन लीजिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रमिक भाई और बहनों को आपकी रेडियो सखी छवि गर्ग का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। और सुनाइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमारा तो यही कहना है कि इस जानलेवा गर्मी से खुद को बचाइए, और इसके लिए आपको अपने खाने पीने पहनने सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि गर्मी से बचने के लिए अपने भोजन में ठंडी तासीर की चीज़ें शामिल करें और शरीर में पानी की कमी ना होने दें। ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें, और हाँ, धूप में निकलने से पहले कम से कम 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। शरीर को अच्छी तरह से ढक

ढककर मतलब पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और अपने सर को भी टोपी या गमछे से ढक लें। इस तरह सावधानी बरतने से आप हीट स्ट्रोक से बचे रहते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें, हम तो बस यही कामना करते हैं। दोस्तों, अगर हम हर मौसम में अपना मौसम के अनुरूप ही खान पान और कपड़ों के साथ ही दिनचर्या का ध्यान रखें तो कभी बीमार ही ना पड़े। लेकिन कुछ लोग तो खुद के ही दुश्मन होते हैं। अरे भाई, मेरा मतलब है कि जानबूझकर सेहत खराब करने वाली चीज़ों का सेवन करना, जैसे शराब, तंबाकू, धूम्रपान या ड्रग्स। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब कितना नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी कभी दिखावे में आकर या फिर आदत लग जाने पर हम इन चीज़ों का सेवन करने लगते हैं। अब ये तो वही बात हो गई ना कि आ बैल मुझे मार, है ना मित्रों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आज है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर समस्या की जो चुपचाप हमारे समाज की जड़ों को कमजोर कर रही है। जी हाँ मित्रों, और वो समस्या है मादक पदार्थों की अवैध तस्करी। मादक पदार्थ यानी नशीले पदार्थ जैसे स्मैक, हेरोइन, गांजा और भी कई तरह की ड्रग्स, इनकी अवैध खरीद फरोख्त केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी बड़ा खतरा है। आप सबसे अधिक चिंता की बात तो ये है कि नशे का जाल युवाओं तक तेजी से फैल रहा है। जीवन में तनाव, गलत संगति, दिखावे की संस्कृति और जिज्ञासा के कारण कई युवा नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और हाँ, इनकी शुरुआत भले ही सिर्फ एक बार से होती है लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। साथियों, नशा व्यक्ति के शरीर और मन दोनों पर बुरा असर डालता है। इससे सोचने समझने की क्षमता कमजोर होती है, स्मरण शक्ति घटती है और कई बार व्यक्ति अवसाद या गंभीर मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, इसके दुष्प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते, परिवार भी इसकी मार झेलता है। घर की आर्थिक स्थिति तो बिगड़ती ही है, साथ साथ रिश्तों में तनाव बढ़ता है जिससे परिवार का सुख चैन छिन जाता है। दोस्तों, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी अपराध को भी बढ़ावा देती है और यही अपराध समाज की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। ऐसे में साथियों, सवाल उठता है कि समाधान क्या हो। इसमें सबसे पहला कदम है जागरूकता। बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में सही जानकारी देना, परिवारों को भी अपने बच्चों के व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और खुलकर उनसे संवाद करना चाहिए। और हाँ, इसमें हम सभी यानी कि स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाएं और मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दे। साथ ही प्रशासन और कानून व्यवस्था को भी तस्करी रोकने के लिए सतर्क रहना होगा और सख्त भी रहना होगा। श्रोताओं, याद रखिए, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को कमजोर करता है। आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अब समय है आपसे आज का प्रश्न पूछने का। तो बताइए हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? हम आपको आगे कार्यक्रम में इसका उत्तर देंगे, तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम उस दौर की याद दिलाता है जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। जरा कल्पना कीजिए, चारों ओर संघर्ष, आंदोलन और आजादी की पुकार सुनाई दे रही है। ऐसे समय में एक आवाज उभरती है, वंदे मातरम। ये सिर्फ दो शब्द नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन बन गए। साथियों, आजादी की लड़ाई तेज हुई और जब क्रांतिकारी अंग्रेजों के सामने डटकर खड़े हुए तो उनके होठों पर एक ही नारा था, वंदे मातरम। ये गीत साहस देता था, जोश भरता था और याद दिलाता था कि मातृभूमि सबसे ऊपर है। दोस्तों, इस गीत की कहानी शुरू हुई महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से। जी हाँ मित्रों, यही इस राष्ट्रगीत के रचनाकार हैं और हमारे

पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि एक दिन उनके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति गहरा प्रेम उमड़ा। उन्होंने भारत माता को एक स्नेहमयी शक्तिशाली माँ के रूप में देखा। हरी भरी धरती, लहलाते खेत, शीतल हवाएं और बहती नदियां, इसी भावना से जन्म हुआ वंदे मातरम का।

0: हुआ वंदे मातरम का। बाद में उन्होंने इस गीत को अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। धीरे धीरे ये गीत लोगों की जुबान पर चढ़ गया और हाँ मित्रों, बाद में इसे भारत के राष्ट्र गीत का दर्जा मिला और ये गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति का प्रतीक बना। श्रोताओं, इसके रचनाकार बंकिम चंद्र ने साहित्य के माध्यम से लोगों में राष्ट्रप्रेम, स्वाभिमान और जागरूकता की भावना जगाई। दोस्तों, ज्ञान सागर में बस इतना ही। अब लेते हैं क्षणिक विराम और मिलते हैं कुछ ही देर में।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: साथियों, हमारे श्रमिक भाई इतने कठिन परिश्रम से अपना जीवन यापन तो करते ही हैं, साथ ही समाज और देश के विकास में भी अपना योगदान देते हैं। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने श्रमिक भाइयों की समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उनकी सहायता करें समस्याएं सुलझाने के लिए, उन्हें आवश्यक कानूनी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं। आइए इसी विषय पर सुनते हैं कानूनी वार्ता। श्रमिकों के लिए कानूनी सुविधाएं, वार्ताकार हैं पद्मजा शर्मा।
4: हमारे समाज में श्रम को आरंभ से ही महत्व दिया जाता रहा है। हर व्यक्ति अपने आप में एक श्रमिक है, क्योंकि वो अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता है या कहीं भी नौकरी करके तय मजदूरी प्राप्त करता है। आज के समय में उद्योगों के विकास को देखते हुए श्रमिकों का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन नए नए कल कारखाने स्थापित हो रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रमिक अपना अपना काम करते हैं। इन श्रमिकों में कुछ तो प्रशिक्षित और पढ़े लिखे होते हैं, वहीं कुछ श्रमिक अप्रशिक्षित और बिना पढ़े लिखे होते हैं। श्रमिकों में पुरुष, महिलाएं और 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम करते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखना दंडनीय अपराध है। इन श्रमिकों के लिए मालिकानों द्वारा वेतन या मजदूरी के अलावा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त कराई जाती हैं। इसके लिए बहुत से नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इनका पूरा लाभ श्रमिकों को नहीं मिल पाता है। हमारे देश में श्रमिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सुरक्षा दिए जाने की व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा की जाती है। जिन स्थानों पर श्रमिक काम करते हैं, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी आवश्यक सुविधाओं की जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। यदि श्रमिकों को इनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है, तो वे अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकते हैं और मालिकानों को इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि वे उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में लगभग 40 करोड़ श्रमिक काम करते हैं, जिनमें अधिकांश श्रमिक महिलाएं हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिला श्रमिकों से अधिक काम लेकर बहुत कम मजदूरी दी जाती है। वहीं महिला श्रमिकों को शारीरिक शोषण, छेड़छाड़ और दूसरी तरह की कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। यदि महिला श्रमिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, तो वे इस तरह उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए कारखाना अधिनियम, भविष्य निधि, ESI, बोनस, काम करने के दौरान दुर्घटना या मृत्यु होने पर हर्जाना, न्यूनतम वेतन जैसे लाभ सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिन कारखानों में अधिक संख्या में श्रमिक काम करते हैं, वहाँ श्रमिकों के लिए कैंटीन, मनोरंजन और आराम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध कराना मालिकानों का कानूनी दायित्व होता है। श्रमिकों को ये सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं। जो श्रमिक दैनिक, साप्ताहिक या मासिक मजदूरी कर काम करते हैं, उनके लिए सरकार से निर्धारित न्यूनतम

0: मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है। वेतन पाने वाले श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और ईएसआई की सुविधा भी प्राप्त होती है, लेकिन इसके लिए श्रमिकों को अपने वेतन से अंशदान की कटौती करानी होती है। जितना अंशदान श्रमिक करते हैं उतना ही मालिकों को भी करना होता है। ईएसआई के अंशदान के बदले श्रमिक और उसके आश्रितों को ईएसआई अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा और बीमा उपलब्ध कराया जाता है, जबकि भविष्य निधि में अंशदान करने पर श्रमिक आवश्यकता पड़ने पर इस निधि में से धनराशि निकलवा सकते हैं अथवा रिटायर होने पर पूरी रकम प्राप्त कर सकते हैं। काम के दौरान किसी श्रमिक के साथ दुर्घटना हो जाने पर उसे समुचित मुआवजा और वेतन सहित अवकाश इलाज पूरा होने तक मिलता है। वहीं स्थायी विकलांग होने पर या मृत्यु होने पर उसके परिवार को नियमानुसार हर्जाना भी दिया जाता है। श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन या मजदूरी में से अनुचित कटौती नहीं की जा सकती। हड़ताल, तालाबंदी या आपात स्थिति आने पर श्रमिकों को अलग से कानूनी व्यवस्था के अनुसार वेतन या सुविधाएं दिए जाने का भी प्रावधान है। वहीं विशेष परिस्थितियों में काम से छुट्टी लेने और काम के घंटे तय करने का अधिकार भी श्रमिकों को मिला हुआ है। विशेष अवसरों पर श्रमिकों को मालिकों की ओर से लाभ में से बोनस देने की भी व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन ये सभी लाभ उन श्रमिकों को ही मिलते हैं जो जागरूक और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। महिला श्रमिकों के लिए अन्य सुविधाओं के साथ साथ दूसरी कई सुविधाएं अलग से उपलब्ध होती हैं, जिनमें गर्भावस्था के दौरान निशुल्क जांच, बच्चे का जन्म होने पर वेतन सहित प्रसूति अवकाश, मातृत्व लाभ जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को बनाए रखने की जिम्मेदारी मालिकों की होती है। इसके लिए हर संस्थान में एक ऐसी जांच कमेटी भी बनाई जाती है जो महिला उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर जांच करती है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सलाह देती है। श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास के लिए आज सरकार द्वारा बहुत सी योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है, जैसे श्रमेव जयते, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ग्रामीण कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना आदि। श्रमिकों को चाहिए कि वे उनके बनाए गए नियम कानून और योजनाओं के बारे में जानकारी रखें, साथ ही अपने साथियों को भी इनकी जानकारी अवश्य दें, जिससे कि वे सभी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और बेहतर ढंग से सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कानूनी वार्ता, श्रमिकों के लिए कानूनी सुविधाएं। वार्ताकार थी पद्मजा शर्मा।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, अब बात करते हैं सेहत की। जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में बात की थी खान पान की, तो उसी को देखते हुए आज हम बात करेंगे कच्चा आम, जिसे अमिया भी कहते हैं। दोस्तों, गर्मी में कच्चा आम का सेवन लू से बचाता है और शरीर को तुरंत ठंडक और ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही ये पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है और पसीने से खोई हुई नमी की भरपाई कर डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी को रोकता है। मित्रों, इसके सेवन से पेट की समस्याएं जैसे कब्ज दूर होती है, आंतों की सेहत सुधरती है और भूख न लगने की समस्या दूर होती है। इसके अलावा कच्चा आम विटामिन सी और विटामिन ए का बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाता है और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और हाँ, इसके सेवन से त्वचा भी चमकदार और स्वस्थ रहती है। ये बालों को झड़ने से रोकता है और डैंड्रफ से बचाने में भी लाभदायक है। दोस्तों, इसके सेवन का तरीका बहुत ही साधारण है। आप इस आम का पना बनाकर पी सकते हैं या फिर सलाद के रूप में भी कच्चे आम का सेवन किया जा सकता है। कच्चे आम की चटनी और अचार ये तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में होगा, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: India Awards 2026 in London. Sharing the information on social media, Mr. Goyal said the recognition belongs to the many bridge builders across governments, businesses, academia, culture, and the vibrant diaspora who continue to strengthen India-UK ties. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar announced Operation Amistad, under which two Indian Air Force MCC C-17s took off today for Venezuela with urgent assistance to boost post-earthquake relief efforts. Amistad means friendship in Spanish. In a social media post, Dr. Jayashankar said the assistance contains an Indian Army field hospital unit and over 35 tons of relief supplies, medicines and medical equipment, including two Bhishma cubes. He stated that India is committed to supporting the government and the people of Venezuela in this difficult time. In Venezuela, death toll in two powerful earthquakes has risen to 589. Nearly 3,000 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquake struck near the capital yesterday. Country's interim president, Delcy Rodriguez, has declared a state of emergency following two quakes, 7.2 magnitude and 7.5 magnitude, occurring close to the surface. U.S. Vice President J.D. Vance has confirmed that the U.S. and Iran have agreed to set up a direct deconfliction channel with military representatives from both the countries. The arrangement involves representatives from Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and the U.S. Army's Central Command being stationed in Doha, Qatar. Meanwhile, the United States and the Gulf Cooperation Council today reaffirmed their strategic partnership at a ministerial meeting in Bahrain's Manama. In men's cricket, hosts Ireland were 109 for 4 in 13.4 overs against India in the first T20 international of the two-match series in Belfast when reports last came in. Earlier, India won the toss and elected to field. The second and final T20 international of the series will be played on Sunday. In the FIFA Football World Cup Group I fixtures, Norway will take on France late tonight. In the other Group I match, Iraq will face Senegal. Both matches are scheduled to kick off at 12:30 a.m. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आइए आज हम आपको सुनवाते हैं विमलेश शर्मा की वार्ता। विषय है पाश्चात्य दर्शन के विरुद्ध बंकिम चंद्र का वैचारिक दर्शन।
2: 19वीं शताब्दी के महान साहित्यकार, चिंतक और राष्ट्रवादी विचारक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारतीय नवजागरण के ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने एक ओर पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की, अंग्रेजी साहित्य और दर्शन का गहन अध्ययन किया, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन की मौलिकता को भी समझा। वे ना तो पश्चिम के अंध विरोधी थे और ना ही उसके अंध समर्थक। उनका चिंतन विवेकपूर्ण था। उन्होंने पश्चिमी विचारों का परीक्षण भारतीय दृष्टि से किया और जहां आवश्यक लगा वहां उनका प्रतिपाद भी किया। 19वीं शताब्दी का भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन, विज्ञान और संस्कृति का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। उस समय अनेक शिक्षित भारतीय यह मानने लगे थे कि भारतीय धर्म और दर्शन पिछड़े हुए हैं तथा पश्चिमी विचार की आधुनिकता और प्रगति का एकमात्र मार्ग हैं। बंकिम चंद्र ने इस मानसिकता का विरोध किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पाश्चात्य दर्शन के विरुद्ध चिंतन पूर्णतः बहिष्कार का नहीं बल्कि समन्वय और भारतीयता के संरक्षण का था। वह पश्चिम के उपयोगितावाद, प्रत्यक्षवाद और तर्कवाद से प्रभावित थे, लेकिन पाश्चात्य अंधानुकरण, भौतिकवाद और साम्राज्यवादी विचारों के प्रबल विरोधी भी थे। बंकिम चंद्र का मानना था कि पश्चिमी दर्शन मुख्यतः भौतिक सुख और बुद्धि को केंद्र में रखता है, जबकि भारतीय दर्शन मनुष्य के समग्र विकास की बात करता है। भारतीय चिंतन में आत्मा, धर्म, नैतिकता और लोक मंगल को विशेष महत्व दिया गया है। उनके अनुसार केवल तर्क और इंद्रिय जन्य ज्ञान के आधार पर जीवन का संपूर्ण सत्य नहीं समझा जा सकता। उन्होंने पश्चिमी उपयोगितावाद की आलोचना की। उपयोगितावाद यह मानता है कि वही कार्य अच्छा है जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करे। बंकिम चंद्र के अनुसार सुख जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। यदि

नैतिकता और धर्म को केवल सुख से जोड़ दिया जाए तो मनुष्य का चरित्र कमजोर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि धर्म का आधार कर्तव्य और आत्मोन्नति है, मात्र भौतिक सुख नहीं। बंकिम चंद्र पश्चिमी भौतिकवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने पाश्चात्य दर्शन के भौतिकवाद की तीव्र आलोचना की। उनके अनुसार भारतीय दर्शन और संस्कृत का आधार त्याग, आध्यात्मिकता और कर्तव्य परायणता है। पश्चिमी भौतिकवाद संसार को केवल पदार्थ और भौतिक शक्तियों के आधार पर समझने का प्रयास करता है। इसके विपरीत बंकिम चंद्र भारतीय अध्यात्म की महत्ता को रेखांकित करते हैं। उनका विश्वास था कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि उसमें एक आध्यात्मिक सत्ता भी विद्यमान है। इसलिए जीवन की समस्याओं का समाधान केवल आर्थिक या भौतिक प्रगति से संभव नहीं है। उनकी प्रसिद्ध कृति धर्मत्व में धर्म की व्याख्या अत्यंत तार्किक और आधुनिक रूप में मिलती है। उन्होंने धर्म को अंधविश्वास या कर्मकांड से अलग करके देखा। उनके लिए धर्म वह शक्ति है जो मनुष्य को नैतिक बनाती है और उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। इस प्रकार वे पश्चिमी आलोचनाओं का उत्तर भारतीय दृष्टि से देते हैं। बंकिम चंद्र ने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीय धर्म और संस्कृति की आलोचना का भी प्रतिपाद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय धर्म की मूल भावना सहिष्णुता, करुणा और आध्यात्मिक उन्नयन की है। यदि कुछ सामाजिक कुरीतियां मौजूद हैं, तो उनका समाधान धर्म के मूल सिद्धांतों को त्याग कर नहीं, बल्कि उन्हें सही रूप में समझकर किया जाना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पाश्चात्य दर्शन के एकांतवाद के विरोध में श्रीमद् भगवद् गीता के निष्काम कर्म योग को स्थापित किया। उनके लिए धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन था। उनके चिंतन का एक महत्वपूर्ण पक्ष सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी है। पश्चिमी राजनीतिक विचारों को प्रभावित होने से उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को भारतीय सांस्कृतिक आधार पर विकसित किया। वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उन्होंने पाश्चात्य राष्ट्रवाद को आक्रामक और साम्राज्यवादी बताया, जिसके विरुद्ध बंकिम चंद्र ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता पर आधारित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा दी। उनके लिए राष्ट्र केवल राजनीतिक इकाई नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सत्ता था। उनकी अमर रचना वंदे मातरम इसी भावना की अभिव्यक्ति है, जिसमें मातृभूमि को देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का राष्ट्रवाद नैतिक मूल्यों में समन्वित है, जो आत्मसंतुष्ट राष्ट्रवाद है, तथा अन्य देशों अथवा राष्ट्रों को रौंदकर उसकी सिद्ध उन्हें अभिशप्त है। बंकिम चंद्र अपने राष्ट्र के अभ्युत्थान और प्रगति के लिए संसार के अन्य राष्ट्रों का शोषण समझते थे। वे अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं समानता के प्रबल पक्षधर थे। बंकिम चंद्र का यह भी मानना था कि पश्चिमी सभ्यता की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अत्यधिक व्यक्तिवादी प्रवृत्ति है। व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज और राष्ट्र के प्रति उसके दायित्व भी उतने ही आवश्यक हैं। भारतीय संस्कृति व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन स्थापित करती है, इसीलिए उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों को अधिक मानवीय और व्यापक माना। यह ध्यान देने योग्य है कि बंकिम चंद्र ने पश्चिम के विज्ञान, तर्कशीलता और शिक्षा का विरोध नहीं किया। वे इन उपलब्धियों की सराहना करते थे। उनका विरोध उस मानसिकता से था जो भारतीय परंपरा को हीन और पश्चिमी विचारों को सर्वश्रेष्ठ मानती थी। वे चाहते थे कि भारत आधुनिक ज्ञान को ग्रहण करे, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान और दार्शनिक विरासत को न छोड़े। आज के वैश्वीकरण के दौर में बंकिम चंद्र का यह चिंतन और भी प्रासंगिक हो जाता है, जब हम आधुनिक और परंपरा के बीच संतुलन खोज रहे हैं। तब बंकिम चंद्र हमें यह संदेश देते हैं कि आत्मविश्वास के साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। पश्चिम से सीखना आवश्यक है, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। अंततः कहा जा सकता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पाश्चात्य दर्शन के विरुद्ध चिंतन किसी संकीर्ण विरोध का परिणाम नहीं था। यह भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन की गरिमा को स्थापित करने का एक गंभीर वैधिक प्रयास था। उन्होंने भारतीय समाज को आत्मविश्वास दिया और यह विश्वास जगाया कि हमारी दार्शनिक परंपरा किसी भी दृष्टि से पश्चिम से कम नहीं है। पाश्चात्य दर्शन की आलोचना के बावजूद उन्होंने कभी ज्ञान का संकुचित विरोध नहीं किया। उनका दृष्टिकोण था कि भारतीय समाज को पाश्चात्य
पाश्चात्य संस्कृति के प्रति पूर्णतः समर्पित हुए बिना वहाँ की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक व व्यावहारिक प्रथाओं को अपनाना भी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी माना कि पाश्चात्य विचारों को बिना सोचे समझे

0: अपने से भारत अपनी स्वतंत्र पहचान और मौलिक चिंतन को खो देगा।
1: अभी आप सुन रहे थे विमलेश शर्मा की वार्ता। पाश्चात्य दर्शन के विरुद्ध बंकिम चंद्र का वैज्ञानिक दर्शन। इसी के साथ विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में लखनऊ केंद्र से होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आते ही कार्रवाई शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्त भोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था, मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि

0: प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल एसआईटी की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। एसआईटी मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति

0: समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा खवानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ की तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आस पास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर PAC पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शामे गरीबा मजलिस उफरामाप इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
3: मीडियम वेव 401.5।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आपकी रेडियो हम सफर मुकुल तिवारी लेकर आ गई है आप सबके सामने कार्यक्रम जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग खुश और तरोताजा होंगे। वैसे तो मुझे पता है ही कि गर्मी के बढ़ते तापमान ने दिन का सुकून और रात की तो नींद उड़ा ही दी है। पंखे से राहत नहीं और कूलर AC राहत तो पहुंचाते हैं, पर जब महीने के लास्ट में बिजली का बिल देखो तो तन बदन और दिमाग का तापमान बहुत बढ़ जाता है। इंसान करे तो क्या करे, जीने में और जिंदा रहने में फर्क तो होता ही है। श्रोताओं, अगर हम सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं तो जब तक सांसें हैं तब तक किसी भी तरीके से जी ही लेंगे। सुख दुख से ज्यादा कोई क्या ही फर्क पड़ने वाला है। पर अगर जिंदगी को जीना है तो वो तमाम तरीके, वो तमाम उपायों को अपनाना होगा जिससे हमें जिंदगी खुशहाल और आसान बनाने में मदद मिले। पर यहाँ जिक्र सिर्फ बिजली के बिल या गर्मी के बढ़ते तापमान की तो हो नहीं रही है, बात तो कुछ और भी है। हाँ, करेंगे जिसका

चक्र हम आज अपने इस कार्यक्रम में आगे करने वाले हैं, लेकिन पहले एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि जिंदगी में श्रोताओं इम्तहान तो हर कदम पे है और उस इम्तहान को देना ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है। हम इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो जब तक सांसें हैं इम्तहान तो है ही।

श्रोताओं, आज का जो विषय है वो हर घर, हर जेब, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। वो है बढ़ती हुई महंगाई। आज बाजार जाकर सामान खरीदो या घर मंगवाओ, पता चलता है कि जो चीजें पहले इतने की मिलती थी, अब वही चीज अब इतने की मिल रही है। आप इतने में फर्क महसूस कर रहे हैं? पैसे से समझौता अगर नहीं करेंगे तो क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा। खाने पीने की चीज से लेकर घूमने तक, कपड़े से लेकर दवाइयों तक, रसोई से लेकर स्कूल कॉलेज तक, हर चीज महंगी है। जिससे हो क्या रहा है श्रोताओं, या यूं कहें कि समस्या अब सिर्फ आपकी जेब नहीं, आपकी सोच पे भी असर डालने लगी है, है ना? डर, तनाव, सेहत, सब महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं। ईएमआई कैसे भरेंगे? बच्चों की फीस का क्या होगा? घर का खर्च कैसे चलाएंगे? दवाइयों का खर्च कहां से उठाएंगे? कुछ लोग किस्मत को दोष दे रहे हैं तो कुछ सरकार को, और कुछ लोग तो खुद ही को कमजोर समझने लगे हैं। बात सही भी है श्रोताओं, एक हद तक की महंगाई तो बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और आमदनी उतनी है नहीं। लेकिन श्रोताओं, कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त हमारा इम्तिहान लेने आता है। इन मुश्किलों से घबरा कर हार मान लिया तो फिर क्या ही किया। समझदारी से तो हर मुश्किल आसान किया जा सकता है श्रोताओं। आखिर महंगाई अचानक बढ़ी क्यों? तो श्रोताओं, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि अचानक कुछ नहीं होता, बस हम रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अब वैश्विक निगाहों से अगर देखें तो विश्व में युद्ध चल रहा है। अब इसका बोझ, थोड़ा असर तो हमारे भी देश पे पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे तो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना महंगा होगा। अगर बेमौसम बारिश होगी तो फसल खराब होंगे और खाने पीने का सामान महंगा होगा। मांग ज्यादा हो और सामान कम हो तो भी महंगाई बढ़ेगी। पर ऐसा भी नहीं कि ये वक्त सिर्फ भारत पे आया है। जिंदगी में उतार चढ़ाव हम हर किसी की जिंदगी में आता है। हमारा देश हमारा घर है। हर घर की हालात जब हर समय एक जैसे नहीं रहते तो हमारे देश में एक जैसा हालात हर वक्त कैसे बना रह सकता है? श्रोताओं, आपको नहीं लगता कि बातें कुछ ज्यादा ही लंबी खींच गई? तो यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है। और ये जनाब भी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए।

हाँ जी श्रोताओं, बात अगर घर की हो रही है तो देश की भी कर लेते हैं। तो जब घर में कभी कभी माहौल को संभालने के लिए घर के मुखिया को कड़ा कदम उठाना पड़ता है और बाकी सदस्य मुखिया के फैसले पर ट्रस्ट करके उनका सहयोग करते हैं, ठीक वैसे ही देश के मुखिया को भी देशवासियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान में कुछ कदम, कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम इसमें उनका सहयोग करें। यहाँ पर हमें संयम, समझदारी, जागरूकता का भाव दिखाना होगा। महंगाई का असर कभी भी रिश्तों पर या सेहत पर नहीं पड़ना चाहिए श्रोताओं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, कम तेल डालो खाने में, दाल मत बनाओ, ये क्या हर वक्त दवाई दवाई करते रहते हो वगैरह वगैरह। तो आवाज़ में तनाव या गुस्सा, अंदाज में झुंझलाहट, ये सब रिश्तों के मिठास को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सबकी समझदारी हो, ज़रूरी है कि बातों में मिठास हो, ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ प्यारी हो और संयमित हो, क्योंकि आप किस से बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं, इसको आप कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। और हाँ, जब भी एक साथ बैठकर बजट

बनाएं, तो सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखें और साथ ही साथ ये भी कहें, सबको कहें और ख़ुद को कहें कि ऑल इज़ वेल।

हाँ जी श्रोताओं, तो गाना सुनने से पहले हम बात कर रहे थे कि एक साथ बैठकर बजट बनाएं और ऑल इज वेल करें। तो बजट बनाने की जिसमें बात है, उसमें अगर मैं कहूँ, एक छोटा सा सजेशन है कि ज़रूरत को शामिल करें, शौक को नहीं।

के शौक तो हर किसी के बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर महंगाई बढ़ रही है तो यहाँ पे सोचना ज़रूरी है कि ज़रूरी क्या है, क्या चाहिए, बल्कि किसके बिना ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। पर ध्यान ये दिया जाए कि किसके बिना ज़िंदगी लैविश नहीं होगी। ऑनलाइन ख़रीदारी, बाहर की पार्टियाँ, बेवजह घूमना, कम से कम इन पे तो रोक लगाया जा सकता है ना। फल फूल दही अन्न दवाइयाँ पढ़ाइयाँ और सेहत ऑफिस, ये सब तो ज़रूरत है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हर चीज़ के लिए सरकार को दोष देना तो ठीक नहीं है, सरकार का सहयोग कीजिए। रोज़गार लेने के साथ साथ रोज़गार देने वाला भी बनिए। और सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि जागरूक बनिए, कालाबाजारी न कीजिए और न होने दीजिए। इस वक्त क्या है ना श्रोताओं, कि आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाइए। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, संतुलित और संयमित रहिए, क्योंकि श्रोताओं जिसने ज़िंदगी की जंग जीत ली ना हंसते हंसते, वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है।

पीटीएम वेव 196.1 मीटर 31,530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महफिले कव्वाली। मोहम्मद रफी और मन्ना डे की आवाज में आइए सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है कैफियाज़मी ने और संगीत है मदन मोहन का।

मेरे दोस्त, इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, बरसात की रात। मन्ना डे, आशा भोसले, बातिश और सुधा मल्होत्रा के मिले जुले स्वरों में सुनिए साहिल लुधियानवी का लिखा ये गीत। संगीत है रोशन का।

महफिल कवाली कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म अमर अकबर एंथनी से, आवाज है मोहम्मद रफी की। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

इसी गीत के साथ महफिल कवाली कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। लकी अली की आवाज में सुनी कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत। गीतकार है सावन कुमार और संगीतकार है राजेश रोशन।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकार

0: हरिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में एचएसबीसी के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी

0: से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
1: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया।

0: But FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. In men's cricket, hosts Ireland have set a target of 183 runs for India in the first T20 international match of the two-match series in Belfast. Put into bat, Ireland scored 182 for 9 wickets in stipulated 20 overs. In reply, India were 129 for 6 in 15 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Centre to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximise benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. And in US Open badminton, India's Ronak Chahan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab. ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात के कंट्रोल से मुतालिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मंशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। जर्मनी में आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान चेन्नई ताइपे के आला दर्जे के खिलाड़ी चाउ टीएन चेन को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किदांबी श्रीकांत और 3 खवातीन बैडमिंटन खिलाड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंशियात से मुक्त भारत के विजन को हासिल करने के लिए आज एक तफसीली लाहे अमल पेश किया। मंशियात के कंट्रोल की ब्यूरो के जरिए मुनक़िदा एक मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला ने 2026 से 2029 तक के लिए मंशियात की कंट्रोल से मुतालिक एक विजन दस्तावेज का आगाज किया। इससे कबल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने यह कहते हुए मंशियात के खिलाफ एक मुत्तहदा लड़ाई पर जोर दिया कि मंशियात की लानत से कौमी सलामती, समाजी इस्तेहकाम, इक्तसादी मफादात और नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल को खतरा लाहक है। उन्होंने रूहानी लीडरों, नौजवानों और माओं से जोर देकर कहा कि इस लड़ाई को जीतने के लिए वो सब एक वाहिद प्लेटफार्म पर यकजा हों।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: वजीर दाखिला ने एक ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट का भी आगाज किया, जिसके तहत तकरीबन 6000 करोड़ रुपए मालियत की 2,09,500 किलोग्राम जब्त शुदा नशावर मादों को जाया किया जाएगा। وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ نشہ مکت بھارت ابھیان عوامی شرکت سے ایک عوام الناس کی تحریک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے یہ بات سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے وزیر مملکت بی ایل ورما کا ایک مضمون شیئر کرتے ہوئے کہی، جو نشے سے مکت بھارت کی تعمیر کی اہمیت پر تحریر کیا گیا۔

है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने नशे से मुक्त भारत और विकसित भारत बनाने के मिशन में शामिल होने के लिए हर एक शहरी पर जोर दिया। जनाब वर्मा ने अपने मजमून में तहरीर किया है कि हुकूमत मनशियात की लत को एक हसास मामला समझती है जो भारत के नौजवानों के मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की से ताल्लुक रखता है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने अद्वियात से मुतालिक जाविते 1945 में तरामीम की तजवीज की है। उनका मकसद मुआइने, टेस्ट करने या तजिया करने के लिए इजाजत हासिल करने वाले जाबितों को सहल बनाना है। वजारत ने कहा कि तरमीम में तमाम तरह की अद्वियात को तजिया जाती और गैर क्लिनिकल टेस्टिंग मकासद के लिए कम मकदार में दरामद करने के लिए मंजूरी पर मबनी एक निजाम मुतारिफ कराया गया है। सहल करदा जाबितों का इतलाक उन बहुत सी अद्वियात पर नहीं होगा जिनका ताल्लुक जिनसी हार्मोन्स, साइटोटॉक्सिस ड्रग्स और बीटा लैक्टम ड्रग्स से है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने मुल्क भर में 1000 मुशावरती अफराद को तैनात करने और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करने का ऐलान किया है। इसका मकसद भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तजारती माहदे सीटा के फवायद को ज्यादा से ज्यादा करने में मदद करना है। आज लंदन में 10वीं सालाना बरतानिया भारत वीक से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत बरतानिया की शराकतदारी रवायती तिजारत से कहीं ज्यादा वसी हो गई है जो टेक्नोलॉजी, सॉवरिन एआई, अहम मादनियात, दिफा और साफ तवानाई जैसे जामे शोबों का अहाता करती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में फ्रेजाइल 5 से निकल गया है और इसे दुनिया के सबसे ज्यादा मवाक़े के मकाम पर तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बरतानिया सीटा दोनों ममालिक की बेहतरीन अशिया और खिदमात को एक दूसरे के लिए दस्तियाब करने पर मरकूज है। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल को लंदन में मुनक़िदा सालाना बरतानिया भारत अवार्ड 2026 में भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को एक बुलंदी पर ले जाने में कायदाना रोल अदा करने पर खसूसी इनाम से नवाजा गया। जनाब गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह मालूमात फराहम करते हुए कहा कि ये एजाज हुकूमतों, सनतों, माहरीन तालीम, सकाफत और अजीम भारतीय बिरादरी की मरहून मिन्नत है जो भारत और बरतानिया के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में सरगर्म हैं। वेनेजुएला में आए दो तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। तकरीबन 300 अफराद जख्मी हुए हैं। कल राजधानी के नजदीक आने वाले इन जलजलों के बाद राहत कार मलबे से लोगों को निकालने के लिए काम कर रहे हैं। कराकास और नजदीकी साहिली शहर ला गुआयरा में लोगों को गिरी हुई इमारतों के मलबे में से मदद के लिए पुकारते हुए सुना गया। 7.2 शिद्दत के पहले जलजले के बाद जो दूसरा जलजला आया वो पहले से ज्यादा 7.5 शिद्दत का था। ये दोनों जलजले जमीनी सतह से नजदीक थे जिनकी वजह से तबाही और ज्यादा शदीद हुई है। मुल्क की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने हंगामी हालात का ऐलान किया है। बहुत से ममालिक ने बचाव की कोशिशों में मदद करने की पेशकश की है। उबूरी सदर रोड्रिगेज ने जलजलों के बाद भारत के इत्तेहाद का यह कहते हुए एतराफ किया है कि मुश्किल औकात में भारत और वेनेजुएला के दरमियान तआवुन के जज्बे के ऐन मुताबिक है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने ताजियत का इजहार किया है। ने इस जलजले से होने वाले शदीद नुकसान के तनाजुर में राहत की कार्रवाइयों में इमदाद देने की भारत की ख्वाहिश का इजहार किया है। जनाब मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए मोहतरमा रोड्रिगेज ने बैनुल अक्वामी इमदाद के जज्बे को तस्लीम किया और वेनेजुएला के साथ किए जाने वाले इत्तेहाद को सराहा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्तात का ऐलान किया जिसके तहत भारतीय फजाइया के दो C-17 तैयारे आज वेनेजुएला के लिए रवाना हुए। ये तैयारे जलजले के बाद राहत रसानी में मदद के लिए जरूरी अशिया लेकर गए हैं। हिस्पानवी जबान में अमिस्तात का मतलब है दोस्ती। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस इमदाद में भारतीय फौज का एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा इमदादी अशिया, दवाएं और तिब्बी आलात भी हैं जिसमें दो भीष्म क्यूब्स भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन मुश्किल हालात में वेनेजुएला की हुकूमत और वहां की अवाम की मदद के लिए अहदबंद है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के सहाफियों के ग्रुप से बातचीत की। वजीर मौसूफ ने उनसे भारत में रूनमा हो रही काया पलट तब्दीलियों, दुनिया की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल ने इस

भारत और यूरोप के दरमियान बढ़ते बाहमी इत्तेफाक के सिलसिले में बात की। डॉक्टर जयशंकर ने यकीन दिलाया कि भारत में उनकी मुलाकातों और सफर से भारत ने इस भारत यूरोप शराकतदारी के इम्कानात के ताल्लुक से उनकी मालूमात में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान ने दोनों मुल्कों के फौजी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल तनाज़ियात के तस्फीये का एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इत्तफाक किया है। इस बंदोबस्त में ईरान के सिपाह पासदारा ने इनकलाब इस्लामी IRGC और कतर के शहर दोहा में तैनात अमरीकी फौज की सेंट्रल कमान सेंट कॉम से नुमाइंदगान शामिल होंगे। जनाब वेंस ने एक ब्रिटिश न्यूज साइट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान और अमरीका ने किसी और जंग के खतरे को कम करने की गरज से ईरान के सिपाह पासदारा ने इनकलाब इस्लामी IRGC के साथ एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। इसी दौरान अमरीका और खलीजी तआवुन की काउंसिल GCC ने बहरीन के शहर मनामा में एक वजारती मीटिंग में अपनी जामे शराकत दारी का इरादा किया, जिसमें उन्होंने इलाकाई सालमियत, ईरान के साथ सफारतकारी, शाम और लेबनान में इस्तेहकाम और गजा में तामीर नौ की कोशिशों के तईं अपने अहद पर जोर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और GCC वजारती काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन बहरीन के वजीर खारजा अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी ने इस मीटिंग की मुआविन सदारत की। मीटिंग में GCC रुकन ममालिक के वजराए खारजा और GCC सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदायवी ने शिरकत की। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हकीदत व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था, उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले गए। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मुहर्रम हमें हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है, जिससे शुजात, हमदर्दी और हक व इंसाफ के तई पाबंदी की अकदार को तहरीक मिलती है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि यह मुकदस त्यौहार माशरे में यकजहती, अमन और बाहमी इज्जत के बंधन को मुस्तहकम करने के लिए लोगों को तहरीक देता है। आशूरे मुहर्रम के मौके पर आज वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कुर्बानियों को याद किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन से कई लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहने की तरगीब मिलती है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दरमियान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में जुनूबी मानसून ने मजीद पेशकदमी की है। शुमाल मशरकी भारत, ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इस हफ्ते के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिनके नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस में दायर की गई पहली FIR में दर्ज किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। आज अयोध्या में एक अदालत ने राम मंदिर अतियात मामले में गिरफ्तार 8 मुलजमान को अदालती तहवील में भेज दिया। इन मुलजमान को उनकी गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया था। अयोध्या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा के अफसर KC वर्मा ने अखबार नवीसों को बताया कि उनका रिमांड बरोज़ पीर 29 जून तक बढ़ा दिया गया है। जर्मनी में मुनक़िदा ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय शूटरों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगे हासिल किए। भारतीय शूटरों ने पिस्टल और राइफल के मुकाबले में बेहतरीन खेल पेश करते हुए 7 सोने, 8 चांदी और 9 कांसे के तमगे जीते और उन इनफरादी गैर जानबदाराना खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 14 तमगे हासिल किए। इटली 10 तमगों के साथ तीसरे मकाम पर रहा। बैडमिंटन में भारत के रौनक चौहान आज फ्लोरेटन में खेले जा रहे अमरीकी ओपन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर करते हुए आलमी नंबर 6 और मर्दों के सिंगल्स के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी चीनी ताइपे के चाउटी एन चेन को सीधे मुकाबले में 21-17, 26-24 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मर्दों के सिंगल्स के एक और मुकाबले में कदम्बी श्रीकांत मलेशिया के ली जी जियाओ को 21-14, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री
और देविका सिहा।

भाग क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पांचवीं दर्जे की खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने चेन्नई ताइपी की तुंग सी तोंग को 21-12, 21-19 से शिकस्त दी, जबकि रक्षिता ने चेन सुयू को 21-4, 21-19 से हराया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने मनशियात के कंट्रोल से मुतल्लिक सहसाला विजन दस्तावेज का आगाज किया। उन्होंने मनशियात मुखालिफ मुहिम को और मुस्तहकम करने के लिए बेहतर तालमेल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। मरकज भारत बरतानिया तजारती समझौते के फवायद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की गरज से मुल्क भर में 1000 मशावरती अफराद तैनात और तजारती पोर्टल को अपग्रेड करेगा। वेनेजुएला के जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 589 हो गई है। भारत ने हंगामी राहती साजो सामान के साथ भारतीय फजाइया के 2 जहाज रवाना किए हैं। अमरीका और ईरान ने मजीद किसी जंग के खतरे को कम करने की गरज से बराह रास्त फौजी मवासिलाती चैनल कायम करने से इतफाक किया है। जर्मनी में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाज सोने के 7 तमगों समेत 24 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहे। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

जंगली फिल्म में आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत। संगीत है शंकर जय की शंका।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाए फिल्म ज्वेल थीफ के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको सुना रहे हैं पंडित राजन साजन मिश्र से राग तिलक कामोद में ख्याल गायन।

अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन साजन मिश्र से राग तिलक कामोद में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का
1: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आ गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: nation with 10 medals. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर था 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।